मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

0: पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। आज का चिंतन।

भक्त को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे और ये याद रखे कि महादेव उन लोगों की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वो कुछ बड़ा देने वाले होते हैं। महादेव केवल सृष्टि का ही नहीं, हमारे मन के अंधकार का भी अंत करते हैं।

समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला, इस बात से साबित होता है कि हर बड़ी उपलब्धि पहले परीक्षा लेती है। महादेव का जीवन बताता है कि एकांत डर नहीं है, आत्मबोध का द्वार है। जो स्वयं से मिला वही मुक्त हो गया।

जिसका हृदय निर्मल होता है उसका क्रोध भी प्रचंड होता है, क्योंकि शुद्ध हृदय वाले भगवान शिव के प्रिय होते हैं और शिव का क्रोध भी तांडव के समान होता है। शिव कहीं बाहर नहीं हैं, वे भक्त के प्रत्येक भाव में जागृत हैं, उनका हर रूप आत्मा का प्रतिबिंब है।

आप सुन रहे थे भक्ति गीतों की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान का धारावाहिक प्रसारण।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्रीराम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आइए अब सुने कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बातें मत जिक्र करेंगे बागों में टपका सिंचाई के फायदे के बारे में। भाई टपका सिंचाई की अगर हम बात करें तो जो टपका सिंचाई है जिसने हम बूंद बूंद जो सिंचाई है उसका नाम तो जाना है, और आधुनिक जो सिंचाई है उसका बेहद ये कह सकें हम भाई प्रभावी एक तो ये तकनीक है। इसमें एक तो भाई हमारा पानी और जो घुलनशील उर्वरक है वो भी छोटे व्यास के माध्यम से प्लास्टिक के पाइप के नेटवर्क के जरिए सीधे पौधे की जड़ा में बूंद बूंद करके पहुँचाया जा है। और भी बागों में आम है, अमरूद है, नींबू है, अनार है, और भी हमारे जो बहुत सारे बाग हैं इस प्रणाली से बढ़िया भी मुनाफा भी ले सके हैं, और इसमें जो हमारी लागत है वह भी कम आओगी, जो पानी की बचत इसमें बनेगी। ये सुनने में आता भाई पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी, और हम देखा थे बलाना भी पानी की कमी किस तरह है, खूब जोड़ हैं, तालाब हैं, और भी नीचे का जो चाव का पानी है बलो मीठा है, लेकिन हमने क्या कराया अंधाधुंध जो एक पानी का दोन है वो हमने कराया। जड़ भाई हमने कपास लेनी चाहिए अर्ध सिंचित एरिए हैं या फिर हमारे बिरानी एरिए हैं, जड़ बाजरा लेना चाहिए उड़ हमने दान ले लिए, और जो अंधाधुंध पानी की खिंचाई कारण थे भूमिगत जो जल स्तर है वो मिट्टी जो सोर थी वो खारी होगी, और जड़ पानी भाई ठीक ठाक चावा सामान्य से था 20-30 फुट पे वो बिल्कुल नीचे चला गया, और कितने ऐसा आ गया कि जो खारे पानी है ऊपर आ गए और ज़मीन है हमारी उसमें रे कलर की चास होगी, और एक मीठा जो पानी था वो खराब हो गया जिससे भी हमारी ज़मीन है वो बंजर होगी। जितने भी हमारे पुराने 30-35 साल की हम बात करा तो कितने भी भाई अपना कुआ खोद लें दे कुई खोद लें दे मीठा पानी होया करता, ना सेध्या करता, ना फसलों ने सेध्या करता, ना हमारे स्वास्थ्य ने सेध्या करता, लेकिन आज हम देखा हाँ भाई किसी नहर नार के आसपास तो भला ऐसा पानी है बढ़िया है, नहीं तो भाई जो हमारी फसल है उन ना वो पानी सिद्ध है, और उसका कारण ये है कि अंधाधुंध सिंचाई इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि अभी हम बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से सीधा पानी पौधे ने मिले। और दूसरा इसमें ये भी फायदा है कि भाई जो अनावश्यक रूप से हम पानी खुला पानी लगाओ हैं नाके का पानी लगाओ हैं एक नाके किले नंबर हैं तो उसमें बहुत सारा हमारा पानी भी खराब हो गया है, कितने ऊँचा है, कितने नीचा है, कितने ज़्यादा भर गया, कितने भाई दड़ा रह गया। और इसके अलावा हम बात करें कि भाई जो खरपतवार हैं या फिर जिस ज़मीन में हमने पानी की ज़रूरत नहीं उड़ भी वो पानी जा है वेस्टेज हो है, और हमारा भाई इसमें पानी का भी नुकसान हो है और बहुत सारा खर्चा भी हमारा इसमें लग गया है। और भी इसके अलावा कम मेहनत बिजली की बचत पूरी प्रक्रिया है नियंत्रित हो है जिसमें बिजली की खपत घाट हो है, और बार बार खेतों में पानी देने का जो एक मेहनत है और जो खर्चा है वो भी इसमें बचे है। तीसरा इसमें बात करा भाई समान पैदावार और उच्च गुणवत्ता, यानी कि हरेक पौधे ने एक सा पानी मिलेगा, ज़रूरत के हिसाब से उसने नमी मिलती रहेगी, फलों का आकार और गुणवत्ता में भी इसमें सुधार हो है, और भाई जो हमारी पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी इसमें बने है। इसका जब हम लाभ लेंगे फायदा

0: बागवानी का हम काम करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारा अनुदान हमने मिला है, यानी कि भी बहुत कम खर्चा हमारा लग गया है, और इसमें सब्सिडी जिसने हम अनुदान कह सकें, छूट कह सकें हैं, वह इसमें हमने मिला है, जिसके माध्यम से कम खर्चे में, यानी कि इस तकनीक के माध्यम से टपका टपका जो सिंचाई प्रणाली है, इसका सारा यदि हम ले हैं तो इसमें खरपतवार नियंत्रण में हमारा फायदा रहेगा। जो फलों की गुणवत्ता है वह इसमें बहुत अच्छी हमारी रहेगी, बाजार भाव है वो हमने अच्छा मिलेगा, और इसमें जितने हमने पौधों की जरूरत है उतना ही अपने भाई मोटर का बटन दबाया और जो सिस्टम है टी सिस्टम इसमें है वो चाल पड़े हैं, भाई कौन से किल्ले में, कौन से पट्टे में, कौन सी लाइन में हमने देना है, ना इसमें भाई हमने कस्सी की ज़रूरत, ना कोई भाई इसमें हमने मजदूरों की ज़रूरत, ना किसी तरह के जो और कृषि यंत्र है पानी पात में, हम जिस तरह के हम देखा हाँ भाई पानी कितने खुला हम लगाओ टूट गया, कितने चूहे का बिल है उसमें घिसाव हो गया, नाकाबंदी हमने एक दो दिन पहले करनी पड़े है।
1: ये थी कृषि की बातें, आपने सुनी आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब होंगे समाचार संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिंद महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मॉरिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मॉरिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षी अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षी अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं

0: कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च दशदिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्यपरिवारकल्याणमन्त्री जगत्प्रकाशनड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणपरिषदः षोडशे सम्मेलने समग्रशिशुबालस्वास्थ्यकार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्रीनड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनिमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनिमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस् देशस्य एथेन्स् नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिकसहकार्यञ्च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि

आज रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। साप्ताहिक समीक्षा सुनिएगा, शाम 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होगी। प्रायोजित कार्यक्रम दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे, जो होगा NCERT द्वारा प्रायोजित।

समसामयिक चर्चा और फिल्म संगीत की मिलीजुली प्रस्तुति सुबह सवेरे लेकर आएंगे प्रातः 7:35 पर। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर साथी सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जीनियस।

खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर चर्चा का विषय होगा गन्ना फसल में खाद पानी का प्रबंध। शाम 6:20 पर कृषि जगत में डॉक्टर रीना चौहान के साथ बातचीत का विषय होगा कृषि रसायनों में सावधानियां। अतिरिक्त इसके चर्चा का विषय होगा मिट्टी पानी की जांच। शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम चौपाल। और ये हैं संगीत के कुछ आकर्षण। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:25 पर। प्रातः 7:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हनीफ अहमद खां का सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी प्रसारित होगा। इन्हीं का सितार पर बजाया राग यमन आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:00।

लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर कलाकार होंगे नरेश बलियाना। आपके खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा प्रातः 9:00। एक और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत प्रसारित होगा 10:30 पर। फिल्म संगीत आप दिन में 1:10 पर और शाम 7:30 पर भी सुन सकते हैं।

एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे आदि पुरुष फिल्म के कुछ गीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

याद रखिए, बेटियां हैं फुलवारी वंश का आधार, रोकिए भ्रूण हत्या, बनेगा समाज खुशहाल। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन देता है मृत्यु को आमंत्रण।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुने हनीफ अहमद खां का सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हनीफ अहमद खां का सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपके साथ ही उषा मलिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। श्रोताओं, आज भी कुछ विषय हैं हमारे पास, उन पर बात करेंगे और सुनवाएंगे कुछ गीत भी आपको। उम्मीद है कि आप सभी रेडियो के साथ होंगे और आपको इंतज़ार भी होगा कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। श्रोताओं, आज हम 3 दिन विशेष मना रहे हैं, उन विषयों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में और राष्ट्रीय कैमरा दिवस भी हम मना रहे हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय जो दिवस है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता के बारे में बात करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही उष्णकटिबंधीय देशों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों पर भी आज के दिन बात करते हैं और इस पर चर्चा होती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने और इस क्षेत्र की विविधता और क्षमता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी का वो क्षेत्र है जिसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि स्थल आकृति और अन्य कारक जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आमतौर पर गर्म होते हैं और यहाँ दैनिक तापमान में मौसमी बदलाव बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है भूमध्य रेखा के निकट नम आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता और भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की जो मौसम है वो भी बढ़ता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण और जनसंख्या परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में महत्वपूर्ण प्रगति भी आज की है, लेकिन उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, जिनके लिए सतत विकास हासिल करने के लिए जो विकास के संकेतक हैं और आंकड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला है उस पर केंद्रित करने की आवश्यकता है ध्यान को। 2050 तक यह क्षेत्र दुनिया की अधिकांश आबादी और उसके 2/3 बच्चों का घर होगा। गरीबी के उच्च स्तर के अनुरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक लोग कुपोषण का शिकार होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी जैसी परिस्थितियों में रहने वाली शहरी आबादी का अनुपात विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर पहली रिपोर्ट 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय देशों के बारे में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस तेजी से महत्वपूर्ण होते क्षेत्र पर एक अनूठा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के प्रकाशन की वर्षगांठ के उपलक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में ये संकल्प लिया और घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से इस दिन को आज के दिन हम मनाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियां हैं और इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं जो निरंतर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं।

सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए 2016 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस नामित किया गया, यानी कि मनाने के लिए ये फैसला लिया गया कि 29 जून के दिन उष्णकटिबंधीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाएगा। और यह तिथि वर्ष 2014 में प्रकाशित प्रथम स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के शुभारंभ की याद में भी मनाई जाती है। यह 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों का एक संयुक्त प्रयास था जिसने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया था। यद्यपि रिपोर्ट को अब नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया जाता, फिर भी इसके द्वारा प्राप्त मान्यता के माध्यम से इसकी विरासत आज भी कायम है। विश्व के लगभग आधे जंगल श्रोताओ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधनों का आधे से कुछ अधिक हिस्सा यानी 54% है, फिर भी उनकी लगभग आधी आबादी जल संकट के प्रति संवेदनशील मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक है, हालांकि जैव विविधता का नुकसान भी दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अक्सर होने वाली चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इन क्षेत्रों में चक्रवाती विनाशकारी हवाएं और बाढ़ जो हैं वो आ सकती हैं, जबकि अलनीनो जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली घटना है, वर्षा और तापमान के पैटर्न को बाधित करती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा और अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैला ने सोलोमन द्वीप समूह के समुदायों को बुरी तरह प्रभावित किया, स्कूलों को नुकसान पहुंचाया और बच्चों और उनके परिवारों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। यूनिसेफ ने प्रभावित बच्चों के जीवन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए मदद भी की। तो श्रोताओं, ये थी एक लंबी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के बारे में, और अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

और बहुत ही खूबसूरत गीत, आपको भी उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। और अब बात कर लेते हैं अगले विषय पर, जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आज के दिन हम मनाते हैं और प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और इस दिवस का उद्देश्य है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित की गई थी और 29 जून को ही प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती है। अतः इसके लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए, याद करने के लिए आज के दिन को चुना गया। वर्ष 2007 में पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था एवं विश्व सांख्यिकी दिवस भी श्रोताओं मनाया जाता है, जो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सांख्यिकी सरकार की नीतियों को आकार देने और तैयार करने में कैसे मदद करती है, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स सही विश्लेषण और डेटा इकट्ठा करने के लिए उचित तरीकों के माध्यम से परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करती है। अतः देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान देने के लिए वर्ष 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1947 से वर्ष 1951 तक सांख्यिकीय नमूनाकरण पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वर्ष 1931 में महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ISI द्वारा व्यापक सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डिजाइन और योजना बनाई गई थी। इस सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSS उनके द्वारा साल 1950 में स्थापित किया गया था। आज तक देश में नमूना सर्वेक्षणों के संग्रह के लिए NSS भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। श्रोतो, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता के बीच, विशेष रूप से युवाओं के बीच, सामाजिक आर्थिक नीतियों और योजना निर्माण में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिन हमें यह समझने में मदद करता है कि सटीक डेटा और विश्लेषण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और अब बात गीत की।

तो एक और दिन विशेष आज हम मना रहे हैं और वो है राष्ट्रीय कैमरा दिवस। प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है और यह कैमरे के आविष्कार की याद में और फोटोग्राफी के इतिहास को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय दिवस कैमरे और हमारे द्वारा अपने कैमरों से ली गई तस्वीरों को समर्पित ये दिन है। कैमरे से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें। कैमरा एक अपरिहार्य उपकरण है जिसका उपयोग यादों

घटनाओं, लोगों और स्थान को रिकॉर्ड करने और उनकी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। कैमरे के आविष्कार से पहले किसी दृश्य को दस्तावेजित करने के लिए एकमात्र साधन चित्र और रेखाचित्र थे। किसी व्यक्ति या स्थान की छवि को रेखाचित्र में उतारना समय और कौशल का काम था। बहुत कम लोग किसी व्यक्ति की हूबहू छवि बना पाते थे। घटना के सार को पकड़ना तो दूर की बात है। कैमरे की शक्ति ने कई लोगों को महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करने का एक सरल, सस्ता और तेज समाधान प्रदान किया। जॉर्ज ईस्टमैन, जिन्हें फोटोग्राफी का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने कैमरे को आम लोगों तक पहुंचाया। हालांकि उन्होंने कैमरे का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के उपयोग, सुगमता और उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। उनके इन सुधारों ने दुनिया भर के घरों में कैमरे की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की। कैमरे पहले बहुत बड़े और भारी होते थे, लेकिन बाद में डिज़ाइनों में इतना सुधार हुआ कि कुछ कैमरे पैन जितने छोटे हो गए। आज के डिजिटल कैमरे में कई विशेषताएं और विविधताएं हैं जो उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए आकर्षण बनाते हैं। पोर्टेबल और उपयोग में आसान विशेषताएं न केवल हमें तुरंत तस्वीरें लेने की सुविधा देती हैं, बल्कि उन्हें तुरंत संपादित करने की सुविधा भी देती हैं। और बिल्ट इन कैमरे वाले जो स्मार्टफोन हैं, ऐसी सुविधाएं भी इनमें होती हैं जो हमें तस्वीरों को तुरंत साझा करने की अनुमति भी देती हैं। फोटो खींचना अब बहुत आसान हो गया है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार 2017 में हमने 1.2 ट्रिलियन से अधिक डिजिटल फोटो खींची। और देखिए, उसके बाद तो 9 साल और गुजर चुके हैं, तो हम पूरे वर्ष भर में कितनी फोटो खींचते होंगे। कैमरों ने एक लंबा सफ़र तय किया है और अब किसी भी पल को कैमरे में कैद करना सबसे आसान काम है। और कैमरा, आज हम जो राष्ट्रीय कैमरा दिवस मना रहे हैं, उसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपने शौक को पूरा करने के लिए आप इसे एक पेशे के रूप में अपना सकते हैं, या फिर तस्वीरें खींचकर इस दिन को मना सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लें जो आपको पसंद हो और उस याद को संजो कर रखें। फोटोग्राफी की क्लास आप ले सकते हैं, किसी को बेहतरीन तस्वीरें लेना, खींचना सिखा सकते हैं। अपने कैमरे के बारे में अधिक जानकर अपने फोटोग्राफी के कौशल को आप बढ़ा सकते हैं और इस तरह से कैमरा दिवस आप मना सकते हैं।

0: और श्रोताओं, अब इन्हीं सब बातों गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटने की। थोड़ी देर बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए। तब तक आनंद लेते रहिए इस गीत का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए

0: के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल

0: सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी, आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अलनीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी

0: चार सेकंड हुए हैं। समय है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज कलाकार हैं नरेश बलियाना।
1: सेठ तारंग के खिस्से से ये बात है, जब सेठ के दोनों सेठ सेठानी बड़मा जाते हैं लकड़ी तोड़ के लाते हैं, उस टाइम पे जब उनके काफी टूटता जाता तो बड़मा लकड़ी लाते हैं और शहर में बेचते हैं। क्या बताए एक बात के द्वारा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: उसने देखा चंद्रगुप्त हाँसी ठल्ला करया होगा, जब चंद्रगुप्त नहीं मिले नहीं दिखाई दिए तो रोन लग जाती हर एक बात के माध्यम से, क्या बताया कभी ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: और लीजिए सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम की ये अगली रागनी।
1: धर्म मालकी को चंद्रगुप्त टापू में छोड़ देते हैं। जब धर्म मालकी को चंद्रगुप्त दिखाई नहीं दिया तो क्या कहने लगी, अगिया बंजारे कैसी इतनी जवानी थी, ऐसी हालत में छोड़कर चला गया, ये क्या बताए के बात दोबारा।

0: और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: सेठ सेठानी आपस में बात करते रहे और इतने में दिल लग जाता है के बात करते रहे के बताया भला।

लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नरेश बलियाना को। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

जब वी मेट, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज़ें मीका सिंह और साथियों की थी, गीत इरशाद कामिल का, संगीत प्रीतम का और पसंद आप सभी की। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां से

अवधेश राय, प्रीति व नवनीत, रामवर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। और ये खत है कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज व साहिल का, संघ मित्रा श्रोता संघ यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार, वंदना धुले, अर्पिता व समस्त सिंगणकर परिवार, गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकर्णपुर राजस्थान से राजू टुटेजा खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी और अमृत बड़वाल। आपके साथ हैं शिव सेठी और स्माइल टुटेजा भी। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम बेगम बादशाह फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल और धुन तैयार की कल्याण जी आनंद जी ने, पसंद किया आप सभी ने। गांव चौधरीवा से राजू अग्रवाल, केशव, अलक, चरणदास, रेखा, परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा आफरीन व जमीर खान, प्रमिलागंज आलोट रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा, जामभरून अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, आशीष, पृथ्वीराज जोशी व साध्वी जोशी, परभणी से आप हैं गणेश हरगांवकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जयतेग विरक और मीका विरक, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित व हैप्पी राय। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

और आइए अब सुने उपहार फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी की। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। गोला बाजार बक्सर से शधानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। डबवाली से हैं जेके बोकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बोकोलिया। छत्रपति संभानगर से राजेश साबले पाटिल, राशि राजेश, शीतल राजेश। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना व निवान शर्मा। और डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से आप हैं महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र व मानसी शाह। और ये खत है मिश्र पाना केलंगा से, मास्टर सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु, देबू परी, पीहू, पाखी और संतरा देवी का। चकला बाजार समाना से आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और परिवार के सभी सदस्य।

बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची तनु, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से वैष्णव कॉलोनी से सनावद एमपी से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। बेरडी से लिखते हैं राजेश सैनी, कंचन, गायत्री, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक व समस्त परिवार। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। दिल्ली मोरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी व आकाश कुमार। गांव बाता से चांदीराम चंदेल, गुरमीत, कमल, सोनू, गौरव, नीरज और सतपाल मलिक। आप सभी ने सुनना चाहा है जब जब फूल खिले फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी के साथ आवाज़ नंदा की भी है, आइए सुनें।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

मोम की गुड़िया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गायक और गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और आइए अब सुने साजन बिना सुहागन फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, संगीत निर्देशन उषा खन्ना का है। और दोनों ही गीतों को सुनने के लिए हमें आप सभी के खत मिले। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा। दही गांव नांदूरा से विवेक भातुरकर, प्रतीक्षा कोमल, समाधान मंगला भातुरकर। एसटी कॉलोनी नांदूरा से नीलू कुमार बगाड़े, सुनीता बगाड़े, प्रेम व राज। अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार। गांव बर्दू चैना से महिपाल शोराण व परिवार के सदस्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही व मेहराज जहां। गांव बलियाली भिवानी से आप हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण बंसल, ममता, कमल बंसल, गर्वित और तमन्ना बंसल।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का यह अगला गीत नसीब फिल्म से पसंद आप सभी की है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता गांधी, नोनू शगुन व विक्की गांधी। गांव हिरण छप्पर से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान व परिवारीय। राजपुर से हैं घिसू तिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ व कुणाल तिलवारे। गांव कुलाणा से कृष्ण कुमार ढूंढाड़ा, सोनू, मोनू व घोलू। मसीता डब्बवाली से लिखते हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग व मोहित। गाजियाबाद लोनी से रजा अहमद, इशरत जहां, जमाल कमाल, माहिर व बुशरा। शक्ति कॉलोनी राजकोट से हिमांक, व्योम नानावती, खंजन व मीनाक्षी नानावती। लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र, कर्मवीर व लक्ष्मी देवी। गांव लुडेसर सिरसा से आप हैं पप्पू रामगाट, लक्ष्मी देवी, प्रियंका। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार व सौरभ डूडी। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना नसीब फिल्म का गीत, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना, वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने।
1: हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, और रफ़ी साहब की ही आवाज़ में यह है आपकी परछाइयाँ फिल्म का गीत, जिसे लिखा राजा मेहती अली खान ने और संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। दोनों ही गीतों के लिए हमें खत मिले आप सभी के। परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और वंश भत्ता। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश

मैंडी, सौरभ शाइना व निवान शर्मा, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष, बाड़मेर से ही आप हैं खुदा बख्श खलीफा, खुदाद खलीफा व मोमिन खलीफा, रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक व शोभा नायक, छत्रपति संभाजी नगर से राजदीप, रावर करनाल से ज्ञानभूषण, और आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

गांव मटोर कैथल से रामदिया संजय टांक अजय टांक विजय कृष्ण गौरव मुस्कान पायल तमन्ना सिसाई से लिखते हैं नीलम्बोत मीना कृष्णा रामफल मोन मलोट से राज शर्मा मीना शर्मा सौरभ योगेश मैंडी शर्मा और साइना मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर सरिता गवाणकर सिद्धांत व एकांश गवाणकर विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश वैशाली श्वेता सुमित वैध्वनी गवाणकर दादरी गेट भिवानी से हमारे श्रोता हैं कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल व कुणाल मेहरा पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप व आरजू जाजोरिया गांव निम्नाबाद से जसबीर सिंह इल्माबादी जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर और करमजीत गांव जाखूद राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक बिमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक और पूजा खटक आप सभी ने सुनना चाहा है हसरत जयपुरी का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म ललकार के लिए इसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: और इस गीत को सुनकर ज़रूर आपको खुशी मिली होगी। और कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की खुशी का कारण बनना, और उम्मीद है कि रेडियो भी आपके लिए खुशी का ही कारण होगा। और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके मन को हम इस तरह के गीत सुनवाकर खुश कर पाएं। और अब इन्हीं सब शब्दों बातों गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटने की। थोड़ी देर बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशेल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria.

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:22 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
4: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने

0: स्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल। वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
2: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
2: अच्छा
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
2: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
2: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
0: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
2: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
2: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
2: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
0: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आ, इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा।

0: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? हराम, क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ, है? सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
3: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
3: ध्यान से बेटा।
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।

0: नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ,
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा,
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे। फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे। हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे

0: वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति M.M. सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते

ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगी। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। आज संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर दास जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों पहले जब समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जात पात जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब संत कबीर ने अपनी वाणी और कर्म से समाज को वैचारिक अंधकार से बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की तकनीक और आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भिवानी में मनाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने समस्त देश और प्रदेशवासियों को कबीर जयंती की बधाई देते हुए संतों के बताए समरसता, प्रेम और सदाचार के नियमों का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय

0: भूमिका निभाने का आह्वान किया है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा संत शिरोमणि कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर जींद में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान समाज के द्वारा रखी गई मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि पूर्व में रखी गई मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और आज सौंपी गई नई मांगों को भी वे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने संत कबीरदास जी के विचारों की प्रासंगिकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संतों के वचनों को बिना किसी फेरबदल के उनके मूल रूप में मानना ही जीवन की हर उलझन और गुत्थी का वास्तविक समाधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल भवनों को गिराकर नए भवनों का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए बनने वाले भवन न सिर्फ आकर्षक हों, साथ ही ये लंबवत रूप में हों, बाकी जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए खेल के मैदान के लिए किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के किसी भी स्कूल के खस्ताहाल भवन में बच्चों की कक्षा न लगाने की सख्त हिदायत दी और कहा कि उन्हें तब तक आसपास के सरकारी भवन या दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाए जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो जाता। उन्होंने नए स्कूल भवनों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लुधियाना में लोगों के बीच बैठकर सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सरकार की नीतियों को नागरिकों तक पहुंचाना, उनकी प्रतिक्रिया जानना महत्वपूर्ण पहलू है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गाने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी तो जी लें, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। नक्श लैलपुरी के बोल थे, संगीत था सपन जगमोहन का। अगला गीत कानून और मुजरिम फिल्म से सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में गाया हुआ आपको सुनवा रहे हैं। अहमद वसी के बोल हैं, संगीत है सी अर्जुन का।

0: ये था कानून और मुजरिम फिल्म का गीत। सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ें थीं। अहमद वसी के बोल, संगीत सी अर्जुन का।
1: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सावन भादो फिल्म का गीत आपने सुना। वर्मा मलिक के बोल थे, संगीत था सोनी कोहमी का। अगला गीत आइए सुनते हैं, भंवर फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें अब आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ये था भंवर फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आपने सुनी। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

कच्चे धागे फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर गा रही थी, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इससे पहले ऐसा ही एक गीत आपने हेरा फेरी फिल्म से सुना था, आशा भोसले ने गाया, अनजान ने लिखा, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ढोंगी फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

ये था ढोंगी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी का रचा हुआ, आरडी बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थीं। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत देवता फिल्म से, गुलजार का रचा हुआ है, आरडी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

0: ये था देवता फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ से आपने सुनी। अगला गीत दीवार फिल्म से हमने आपके लिए चुना है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। साहिर के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

दीवार फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में गाया हुआ आप सुन रहे थे। और अब आप सुनेंगे कॉलेज गर्ल फिल्म का गीत किशोर कुमार का गाया हुआ, शिव कुमार सरोज ने लिखा है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत है।

कॉलेज गर्ल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ, शिव कुमार सरोज का लिखा हुआ और बप्पी लाहिड़ी का संगीतबद्ध किया हुआ आपने सुना। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं बुनियाद फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बुनियाद फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से खत्म होता है। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल

0: असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ

0: विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात,

0: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले भाई सारे बण भैया ने अनिल भाई के राम राम। और वे शुरुआत करेंगे मौसम के साथ। मौसम आज भी तपिश भरा मौसम है, गर्मी है, खूब अच्छी धूप भी है, कदे बादलवाई भी हो जाए, खाकड़ सा भी हो जाए। और मौसम विज्ञान विभाग की भाई थोड़ी सी ये सिफारिश भी करें कि भाई एक दो दिन के अंदर जो प्री मानसून है उसका असर देखने में मिलेगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में भी चौपाल तो बाहर की बात करें रोहतक से तो खूब दिन में, कल भी अच्छी गर्मी थी, शाम ने लाके कल भी खाकड़ सा हो गया था, और कल एक आधी जगह भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शाम ने कई जिले में छोटी मोटी आई है। बाकी ये नहीं कह सकते कि भाई कितने ज़्यादा बारिश या कितने खूब गर्मी होया हो, और बाकी मौसम ही सही चल रहा है। लेकिन देखो भाई ये तो मौसम अपना है ही, और क्या करें ना, बोले अभी बरस राम साठ सामने में धरती हो जाए हरी भरी। तो आज भाई पूर्णवासी है, साठ का भी नए शुरू हो गया, जेठ गया, तो आगे जो अपने बारिश के मौसम है साठ का भी सामने का भी प्रभु करें कि बहुत अच्छा जो है मौसम फसल का अनुकूल रहे, और बढ़िया जो एक तालमेल है मौसम का फसल के साथ में वो रही जा। और बाकी भी देखो खेती बाड़ी के हमारे काम नुए चलते रहे हैं, और बाकी जितने भी जो भी गर्मी है सर्दी है सब नु हाँ इतना फर्क हो गया कि भाई हमारे पास कुछ इंतज़ाम इसे होगी भी पहले की बात करा रीब की बात करा तो भी तकनीकी खेती बाड़ी में इतनी आ गई जी भाई, कटाई में गाई में बात करा जी भी, खेत के आर में जान के जो हमारे साधन हैं उनकी बात करा, फसल का रख रखाव की बात करा, कोई छिड़काव का काम है या फिर भाई कोई बाई का है जुताई का है। तो पहले आमतौर पर बार बार जिक्र चल रहे भी बुजुर्ग भी बताऊँ हैं

0: बेचने लग रहे हैं, उससे भी अच्छा मुनाफा, शुद्ध घी बना के दें, उनका नाम है अच्छा। तो थोड़ा सा एक पहले करीब की बात करना, तो हर एक चीज़ में बदलाव ज़रूर है, लेकिन बार बार ये जिक्राव है कि वो जो हमारे खान पान है वो सही रही जा, नौका अगर बल्ले भाई इससे सोना के अगर बल्ले कानन काटे, तो भाई उस एक आवक का, उस बढ़ोतरी का, एक उसका आमदन का, और एक भाई जिस तरह राय समार उतरा कर दी, बोला भाई आपस में पूछा कर दे कै मन है भाई, बहुत बढ़ोतरी एक दूनी होगी, तीनी होगी, चूनी होगी, लेकिन जो खाने के अंदर एक कणा है, ताकत है, एक जहर के अंश की मात्रा है, आड़ा के सारी भी रोड़ पड़गी, बाकी सारी बात ठीक, मुनाफा होना चाहिए, फसल हमारी बढ़नी चाहिए, पैदावार हमारी अच्छी आनी चाहिए, लेकिन एक जो ओढ़ दौड़ है बात फिर उड़े आ जाए है, जिसकी सात्विक खेती है, शुद्ध खेती है, प्राकृतिक खेती है, कम खाद की है, उस आए उन्हें बाजार भाव घना मिल जाए है। विदेशी गेहूँ की बात हम करा सी 306 की, भाई लिख रहा है कि 25 मण भी लिख रहा हो, 20 भी लिख रहा हो, 30 भी लिख रहा हो, को अच्छा रख रखाव ठीक करे भाई, पढ़े पढ़े नहीं तो 30-35 मण तक भी लिख रहा है, लेकिन उसका जो बाजार भाव है फिर वो है, जो 50 मण हमारे गेहूँ लिख रहे हैं, 60 मण लिख रहे हैं, भाई कोई किसी का 2,500 का भाव है, कितने 2,400 का, कितने 2,200 का, कौन था, मतलब इस तरह चल रही है, लेकिन उसका जो रेट है हम मान के चलना भाई, जो MP का गेहूँ भाई खान में ले हैं, अरे एक अपना जो खुद का 306 जो खेता में अपना खुद तैयार करे उड़ा है, नाम तभी कहे है, और जो ब्रांडेड लोग हैं, चिन्हित लोग हैं, जो खूब उस खातर बिनु करते, बिल्कुल भरोसे का, प्राकृतिक हो, बिना खाद का हो और प्योर देसी हो, तो मुँह मांगे दाम मिले, तो भाई बात उड़े आएगी भाई, चीज़ भी हमारी शुद्ध सात्विक, और जो अभी हमारा मुनाफा है वो भी इसमें बढ़िया रहेगा। बाकी चलो इस बार हम और भी जिक्र करेंगे, लेकिन विशेषकर बात बात करेंगे जो हमारी गन्ना फसल है, जिन भाई ने मोडी भी है, नौलपी है, दोनों तरह की जो फसलें हैं गन्ना लगा रखे हैं, उसमें भाई के हमारे काम चलने, खाद पानी का उसमें किस तरह से ध्यान करना है, लेकिन उससे पहले भाई आज पूर्णवासी है, जिक्र कराया था भाई ने, भाई गंगा स्नान चल रहा है खूब, अपना हरिद्वार भी जा रहे हैं, दूसरे तीर्था पर भी जा रहे हैं, गंगा स्तुति सुना रहे हैं, गायक कलाकार हैं प्रेम सिंह देहाती।
1: गंगा जी तेरे खेत में गड़े हिंडोले चार, कन्हैया झूलते श्री रुक्मणी झूल रही।

तो भी आपने सुनी गंगा स्तुति, गाय कलाकार थे प्रेम सिंह देहाती, लवे मुक्ति का मार्ग पा गया तेरे बीच नहाने वाला, और पांची में बास करे से मामूली सा गाने वाला, एक दिन मांगे राम माई तेरे बीच समाने वाला, लरल जागा तेरे रेत में कितो होगा संसार का नहीं झूलता संग रुकवण झूल रही। तो भी देखो जो कविजन है अपना अपने कितने विद्वान कवि थे और अपना अपना मामूली सा बताऊँ है ये ही होते भाई कि अपने जो बड़े आदमी हैं बोला भाई बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ने बोले बोल अरे हीरा मुख से ना कर ला।

हमारा मॉल। तो भजन गंगा स्तुति सुनी, एक शब्द और भजन सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे भी गन्ना फसल है उसमें खाद पानी के प्रबंध के बारे में, भाई गन्ने की बढ़िया पैदावार लेने खातर उर्वरक खाद और भाई पानी जल, इसका एक बढ़िया संतुलन भरा तालमेल होना चाहिए। और भाई देखो संतुलित, अगर संतुलन की जब भी बात आव है तो उसमें पहली बात ये आया हुआ मिट्टी की जांच और पानी की जांच। आमतौर पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी भूमिगत जल स्तर है वो हमने अपना हाथे खराब कर लिया, क्योंकि भाई हमने पानी चेक कराया को नहीं, बस दो चीज़ पकड़ ली, बोले अब एक तो साबुन नहीं पाट दी और एक चाह नहीं पाट दी, बस बोले बहुत बढ़िया पानी है। और भाई कई भाई सा भी हो जाए, साबुन भी पाट जाए, चाह भी पाट जाए, और भाई जो हमारी फसल है और धरती माता है उसकी तासीर ठीक रही जाए, उसने कौन सिद्ध है धरती का अनुकूल पानी हो। और कई बार ऐसा भी हो जाए भाई कुछ भी उसमें नहीं पाटता और भाई धरती हमारी ख़राब हो जाए, पानी पीने में बहुत मीठा है लेकिन एक दो दिन के बाद जिस तरह धरती दो तीन दिन के बाद बदतराव है गर्मी के मौसम में सफ़ेद रेई सी उसमें आ जाए, फिर वो बार बार हम पानी लाई जाऊँ और बार बार धीरे धीरे करके उसमें फिर जो रे कलर की चास है वह ऊंधी जा है, और वह नोटा नुकसान मारा जो है खेत मारा ये कह सके हैं कि बिल्कुल बांझ हो जाए, बंजर हो जाए, तो इसके लिए मिट्टी पानी की जाँच भाई बहुत ज़रूरी है। बाकी फिर भी देखो भाई जो सिफारशुदा मात्रा में अगर बात आव है तो भाई शुरुआती दौर में हमने नाइट्रोजन भी डाल दी थी, फास्फोरस भी डाल दी थी और पोटास भी डाल दी थी, लेकिन इसके बाद में हम बात करा कि भाई जिस तरह भी हम पानी दे हैं यानी कि भाई 30 दिन के बाद दें हैं, 120 दिन के बाद दें हैं, तो नाइट्रोजन और जो पोटास है उसकी 3 से 4 समान किस्त में हमने देनी है। नाइट्रोजन की पूरी क्षमता प्राप्त करने खातर यूरिया के साथ 4.1 का अनुपात में नीम की खड़ी हम दे सके हैं और उसके साथ मिलाकर देना इसमें बहुत बढ़िया रहे। और भाई स्प्रे की अगर बात आव है, स्प्रे ते छिड़काव ते, तो भी कल्ले ज़्यादा बढ़ाने खातर पहले या दूसरे पानी के बाद में NPK 19-19-19 NPK भाई 19-19-19 के नाम थे जो भाई जाना है 500 ग्राम वो ले लें, और सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनका स्प्रे करें। इसके अलावा भाई हम बात करें अमोनियम जो सल्फेट है उसका प्रयोग भी शुरुआती दौर में बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। बाकी हम क्या कर रहे हैं आमतौर पर बस ये देखे हैं कि भाई बर्बर यूरिया या फिर DAP कह रहे हैं शुरुआती दौर में, बाद में भाई यूरिया पर घना जोर दे हैं या फिर घने रासायनिक जो छिड़काव हैं कीड़े कैड़े, कई बार ये भी हो जाए कि ज़्यादा यूरिया गिरते हैं, ज़्यादा जो वांस्तविक बढ़वार है वह हो जाए है, गंडे थोते हो जाए हैं और उसमें कीड़े और बीमारी बाद लग गए हैं। पानी की बात आती है फुटाव और बढ़वार का चरण में फसला में भाई पानी बहुत ज़रूरी है, गर्मी का मौसम है। बाकी तो हमने जिक्र कराया कि भाई मिट्टी के अनुसार जिस तरह भी खागड़ की धरती है, काली माटी है, डेर की धरती है, तो उड़े थोड़ा सा भाई हाल कई दिन रहेगी। बाकी जो नरम खेत हैं उनमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना। बाकी भाई देखो साठ का बिना चल पड़ा तो मौसम अगर बारिश का हो तो मौसम के हिसाब से भी हम जो अंतराल है पानीपात का वो हम बढ़ा सके हैं। जो भी हम खाद यूरिया के रूप में दें हैं तो सबसे पहले भाई ये ध्यान रखें अगर हमारी नरम माटी है, नरम धरती है, तो उसमें भाई जब ज़मीन बा आ जाए यानी कि बत्तर आ जाए, पांथमण लाग जाए, उस टाइम पे यूरिया खाद का छिड़काव करें। अगर हमारी डैर की धरती है, काली माटी की चास है, तो भाई उस अवस्था में पहले हम खाद डाल के और फिर उसमें पानी दे सके हैं, ताकि भाई थोड़ी डाकर ज़मीन है, ठाडी है। और बाकी तो भाई ये है कि देखो गर्मी का मौसम है, एक दो दिन में पांथमणे शुरू हो जाए, सर्दियाँ का दिया उड़ा पानी तो बहुत कई बार भिन्न भिन्न में भी धरती हमारी बाव है ओस पड़ी जा उम्र पड़ी जा, तो पानी का जो एक नमी की मात्रा कहने का मतलब ये है सही होनी चाहिए। जब यूरिया खाद हम दें हैं गणी ओसे ओसे भी नहीं दें, बूंदाबांदी हो रही हो, अगर हमने खाद दे दी पत्ता पड़ गया, चाहे कपास फसल की बात करा, चाहे दूसरी फसलों की हम बात करा, भाई गन्ना का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, किससे में भी खाद डालना है तो पत्ता बनी रहनी चाहिए, नमी की पत्ता मसीलन है तो ये समस्या होगी। अगर थोड़ी सी बढ़वार ले जाए है गन्ना या कपास कोई भी फसल तो घनी बारीक खाद हम डाल रहे हैं तो फिर उसमें कई बार अच्छी डाल छिड़काव नहीं हो पाता, उसके लिए जो मोटी खाद आओ ना दानेदार जो अपना बाजरा का दाना तो बड़ी हो जो वे अपने चने का दाना तो थोड़ी सी कम मान के चलो, इस तरह की जो खाद है उसका प्रयोग हम ले हैं तो फिर उसमें छिड़काव में बढ़िया रहें। बाकी भाई देखो ड्रिप सिंचाई की अगर बात आओ है तो पानी की हमारी बचत हो है, छोटे मोटे को कीट पतंगे हैं वो भी इसमें कम आओ हैं, टपका सिंचाई की बात आओ है तो बहुत ये चीज़ें भी हमें अपनानी चाहिए।

खुला नाका हम पानी दे हैं तो उसमें कई डाल की जो समस्या है भाई, पानी भी हमारा फालतू लग गया है, कितने भाई गणा खड़ा है, कितने ऊंचा है, कितने नीचा है, मोड़ा पर सिराना पर जी हमें, और खेत हमारा बिल्कुल चारों कोने एक शार होना चाहिए। अब अगर जिस तरह बरसात का मौसम आओगा भाई, नमी तो हमारी फसल ना चाहिए लेकिन नू भी कौन भी पानी उसमें 20-25 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन खड़ा रहे, उसमें भी जो हमारी गन्ने की फसल है वह उसमें ख़त्म होने का कगार पा जाए। तो पानी का जो तालमेल है वो ऐसा रखें, जल निकासी का भी अगर प्रबंध करें, खुश्की है तो भाई पानी भी इसमें दे दें। बाकी भाई समय रहेगा जिक्र इसमें और भी करेंगे, लेकिन भाई भाई जिक्र करा था शब्द का, तो एक शब्द भाई सुनवा दें, गायक कलाकार हैं सतबीर सिंह।

तो वही आपने शब्द सुने भी, गायक कलाकार थे सतबीर सिंह और उनके साथी, और खेत खलियान कार्यक्रम में जिक्र हमारा चल रहा था भी, जो हमारी गन्ना फसल है उसमें खाद पानी के प्रबंध के बारे में। तो भाई देखो, आम तौर पर सारा जो मेरे किसान भाई हैं प्रैक्टिकल खूब आखा देखी पता हो है सारा, किस टाइम पर भी फसल पानी मांगे है, कितनी मात्रा पानी का जुगाड़ है। और लेकिन फिर भी कई बार क्या हो कि जिस तरह हमने जिक्र करा था भाई, पानी की जो जांच है वह ज़रूरी है, इसमें कई बार हम अनदेखी कर लें, खाली अपना भाई जो एक मुंह में चखण का बिखारा है कि मीठा है कड़वा है चरचरा है, सिर्फ हम इतना देख ले हैं। लेकिन इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय विद्यालय हिसार का जो मृदा विज्ञान विभाग है, वायुड़ पानी की जांच निःशुल्क करा सके। तो हल्का थोड़ा बहुत कुछ वही अपने मिट्टी पानी का जांच का शुल्क नाम मात्र से लगे है, या जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है उड़े बाई सैंपल दे के आ सके हैं, जो कृषि वैज्ञानिक अपने हिसार जाते रहे हैं वो अपना भी लैब में चेक करा के भी उसका परिणाम बयान देते रहे हैं। और देखो भी बहुत ज़रूरी भी है कि हमने जो तकनीक है नई नई नई नई किस्में हैं उनका साथ जुड़ना, मिट्टी की जांच पानी की जांच, कितने भी खर्चा ला लो, माटी मरोड़ है पानी मरोड़ है तो फिर सारा गादल गोड़ हो जाए और हमारा बहुत सारा खर्चा उसमें लग जाए, फिर हमने कहा भाई खेती घाटा सौदा है, बचत नहीं रही। बचत जब भी आओगी जब हम जो तकनीकी खेती उसके साथ जुड़ेंगे, और बाकी जो हमारे सहायक धंधे हैं उनका भी भाई अपने ध्यान रखें, और जो भी अपने खेत क्यार का भी पानी संचय करना है, जल संग्रह करना है, बिरानी एरिए हैं तो अपने डोल हैं मेड हैं वो भाई अपने थोड़े से मजबूत कर लें। हालांकि देखो फिलहाल बारिश तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपना आगे आने वाले टाइम पे भाई उस टाइम पे जब जरूरत पड़ेगी एकदम फिर दिक्कत हो जाए, पानी लिकड़े पास हमने बेरा पटबला भी तरफ लाना पानी टूट गया भाई सारा सारा लिकड़ गया जलान में। तो पहले अपने जो डोले हैं नाके हैं मजबूत कर लें, जो अपना भाई खुले जो कल्टीवेटर वगैरह हैं वो उसमें

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सफा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:10 हुए हैं। हमारी तीसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार
1: और आप सभी साथियों को दीपांशु का भी नमस्कार।
0: दोस्तों, धरती पर यदि कोई क्षेत्र प्रकृति की अनुपम सुंदरता, अद्भुत संपदा का सबसे समृद्ध भंडार है तो वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित ये भूभाग विश्व की लगभग 40% जनसंख्या का घर है और पृथ्वी की लगभग 80% से अधिक जैव विविधता को अपने आंचल में समेटे हुआ है। इन क्षेत्रों में घने वर्षावन, दुर्लभ वन्यजीव, औषधीय पौधे, स्वच्छ नदियाँ न केवल स्थानीय जीवन का आधार हैं बल्कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण हैं। और भारत में भी एक प्रमुख, जो भारत देश है हमारा, वो भी एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ के पश्चिमी घाट, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्व के वर्षावन विश्व की बहुमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं और इनका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और इस कर्तव्य को निभाकर ही हम मानवता के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल महिमा, जैसा कि आपने बताया कि हर साल 29 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। साथियों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 14 जून 2016 के दिन की थी। यह तारीख 2014 में स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के उद्घाटन की वर्षगांठ के रूप में चुनी गई थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी का वह हिस्सा है साथियों, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच स्थित है। यह क्षेत्र पृथ्वी की कुल सतह के लगभग 40%, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें फैला हुआ है। आज उष्णकटिबंधीय क्षेत्र साथियों कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वनों की कटाई है, जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण के साथ संसाधनों का अत्यधिक उपयोग है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो इस क्षेत्र को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके कारण अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। साथियों, हमें चाहिए कि ये क्षेत्र पृथ्वी की अनमोल धरोहर हैं, हम इस बात को समझें और इनके संरक्षण से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण बनाया जा सकता है। इस बात को हमें समझना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ आइए अब इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। आज सप्ताह का पहला दिन है और सोमवार का दिन है और आज के दिन का विशेष कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, हेलो जीनियस फोन इन कार्यक्रम। शुरू करने से पहले कुछ नियम आप सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों, 3 सवालों के सही जवाब आपको आज के इस कार्यक्रम में जीनियस बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कोई दो साथी एक प्रश्न पर रुक जाते हैं और उसका सही जवाब नहीं जानते तो उस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे संपर्क नंबर हैं 0262554462554447 और 2554448।
1: और चलिए बढ़ते हैं साथियों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, मुसहर समुदाय के उत्थान में योगदान के लिए 2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, मैं कृष्ण यादव बोल रहा हूँ भिवानी से।
1: जी कृष्ण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न है आपके लिए, मुसहर समुदाय के उत्थान में योगदान के लिए 2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया?
2: पद्मश्री से सम्मानित किया गया
1: जी, हेलो,
2: ये चलो नहीं आज, अगले पे आता हूँ
1: जी। आप दोबारा कोशिश कीजिएगा और बढ़ते हैं साथियों अगले अगले साथी की तरफ और देखते हैं कि उन्हें इस प्रश्न का जवाब आता है या नहीं। हेलो
3: हेलो दीपांशु सर, गुड इवनिंग
1: जी। नमस्कार, राहुल जी बात कर रहे हैं
3: जी। सर
1: जी, राहुल आपके लिए प्रश्न है।

0: किया गया, ये आपके लिए जो है प्रश्न था, और इसका सही उत्तर रहेगा भीम सिंह भावेश को। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि साथियों 2025 में कुल पद्म पुरस्कार 139 दिए गए थे।
1: जी, और बढ़ते हैं हम आगे। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के लिए है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? हेलो हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी, नाम बताएं।
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से। जी
1: विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं?
2: मैम, ये उपेंद्र द्विवेदी जी भी पद पे आए थे जो।
1: जी, आपको नाम बताना है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं।
2: मैम ये कोई सेठ हैं,
1: जी
2: नाम
1: नहीं,
2: उनका याद नहीं आ रहा है।
1: तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रयास करने के लिए आपका बहुत बहुत
2: जी थैंक यू।
1: शुक्रिया। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? हेलो हेलो,
3: हेलो महिमा मैम, गुड इवनिंग, राहुल बात कर रहा हूँ।
1: गुड इवनिंग राहुल जी। सवाल हम आपके लिए लाए हैं, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं?
3: ये धीरज सेठ जी,
1: जी नहीं,
3: लेफ्टिनेंट धीरज सेठ।
1: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
3: राजा सुब्रमण्यम
1: जी, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है आपने। जुड़े रहे हमारे साथ, अगला सवाल है आपके लिए।
0: राहुल, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने वर्ष 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता पेश किया?
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू,
0: जी बिल्कुल, और ये कब हुआ था?
3: 1954
0: 1954 में 29 अप्रैल के दिन। जी, और तीसरा प्रश्न है आपके लिए,
1: सवाल है, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत की है?
3: अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
1: जी नहीं,
3: ओके मैम, नहीं आता।
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए, आपके प्रयास सराहनीय हैं। और सवाल यही, बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर। हेलो
4: हेलो, महिमा जी को नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप नाम बताएं।
4: मेरा नाम कृष्ण यादव है जी, मैं जीवाणी रामगंज मोहल्ला से।
1: जी कृष्ण जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सवाल है आपके लिए, जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत की है?
4: ये इतना हिट दे दीजिए कि हरियाणा से बाहर है या अपने हरियाणा में।
1: जी नहीं, हरियाणा इसका सही जवाब नहीं है, और नॉर्थ का ये राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है।
4: तो राजस्थान।
1: जी नहीं,
4: उड़ीसा।
1: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है
4: चलिए,
1: आपकी ओर
4: धन्यवाद।
1: से।
4: नहीं आप,
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: ठीक है जी, शुक्रिया।
1: तो दीपांशु, यहाँ हमारे साथ दो साथी जुड़ चुके हैं इस प्रश्न को लेकर। इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताते हैं, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा हिम सरोवर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
0: बिल्कुल महिमा, और साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आशा करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप हमें दे पाएंगे। प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? हेलो
3: सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ, बिट्स पिलानी शहर, जिला झुंझुनू, राजस्थान।
0: जी राहुल, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में, और प्रश्न है आपके लिए, भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया?
3: सोवी
0: जी,
3: कोई हिंट है सर?
0: हिंट तो हम आपको इसमें क्या ही दे सकते हैं, ये यूपी में है, ये बता दीजिए।
3: गंगा, गंगा क्या नाम हो ऐसे कुछ?
0: उत्तर
3: हेलो,
0: प्रदेश राज्य में स्थित है राहुल।
3: उत्तर प्रदेश में तो सुंदरबन।
0: जी नहीं,
3: नहीं आता।
0: चलिए आप दोबारा कोशिश कीजिएगा, कोई बात नहीं, और जुड़ेंगे अगले साथी से इसी प्रश्न को लेकर। हेलो हेलो, आप सभी के लिए

0: स्नेह साथ ही भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है। और जब तक हमारे साथी हमसे जुड़ते हैं, हम आपको बता दें कि साथियों ये रामसर साइट जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और इससे पहले यानी 99वीं कौन सी रामसर साइट थी वो आपको बताएं तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है इससे पहले रामसर साइट बनी थी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ, कृष्ण यादव।
0: जी कृष्ण, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और प्रश्न है, सुना आपने?
1: एक बार दोबारा बताइए।
0: जी दोबारा बता देते हैं, भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है?
1: किसे घोषित किया गया है?
0: जी 100वीं रामसर साइट कौन है?
1: जी सर,
0: उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
1: उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, चलिए सर नहीं आया, अगले पे आता हूँ।
0: जी बिल्कुल, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। और इस प्रश्न को लेकर हमारे दो साथी हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी के लिए प्रश्न था साथियों, भारत की 100वीं रामसर साइट क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा सुरहा ताल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जो जानी जाती है, उसको 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है।
2: और अगला सवाल है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? हेलो, स्वागत है जी, आपका नाम बताएं।
3: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
2: जी राहुल, सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान से सम्मानित किया गया है?
3: अच्छा,
2: खाद्य एवं कृषि संगठन ने ये पुरस्कार प्रदान किया है।
3: कोई हिंट है क्या मैम?
2: जी आपको उन व्यक्ति का नाम बताना है, उनके
3: कौन सा पुरस्कार बोला था आपने?
2: जी पुरस्कार का नाम है मृदा किसान नायक सम्मान।
3: सुरेश सिंह?
2: जी नहीं।
3: वल्लुवन
2: बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है आपकी ओर से ये।
0: और राहुल अगला प्रश्न है आपके लिए, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 किसे दिया गया?
3: गणित में क्या बोला आपने?
0: गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार।
3: सूर्यदत्त मिश्र।
0: चलिए राहुल, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा, कार्यक्रम में जुड़िएगा। और इसी प्रश्न को लेकर हम दूसरे साथी से बात करेंगे। प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे दिया गया 2026 का? हेलो, प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? हमारे एक साथी हमसे जुड़े थे जो इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाए, और देखते हैं कि अगले साथी
1: हेलो
0: इसका जवाब दे पाते हैं नहीं। हेलो
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कृष्ण बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर।
0: जी आपके लिए प्रश्न है, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 किसे दिया गया?
1: लुई ब्रेल।
0: जी ये उत्तर आपका गलत है।
1: ये कोई आप थोड़ा हिंट दे सकते हैं?
0: हिंट तो हम क्या ही देंगे कृष्ण, नाम ही आपको बताना है।
1: अच्छा जी, नाम चलिए सर नहीं आया।
0: जी आप बिल्कुल कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिएगा। और इसी प्रश्न को लेकर हमारे दो साथी हमसे जुड़ चुके हैं, गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026 किसे दिया गया था ये साथियों प्रश्न था, और इसका सही जवाब रहेगा फ्रैंक मर्ले को ये पुरस्कार दिया गया था।
2: और अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अप्रेंटाइसशिप योजना के तहत अभ्यर्थियों से दूरदर्शन व आकाशवाणी चंडीगढ़ तथा आकाशवाणी रोहतक हिसार कुरुक्षेत्र के लिए आवेदक पत्र किए जाते हैं। डिग्री एवं डिप्लोमा के छात्र कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग राष्ट्रीय अप्रेंटाइसशिप योजना के तहत अप्रेंटाइसशिप के लिए पात्र होंगे। स्टाइपेंड भत्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुरूप दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि

0: तिथि 30 जून 2026 6:30 बजे तक होगी। विशेष जानकारी के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी चंडीगढ़ के उप महानिदेशक के निजी सचिव के कार्यालय दिवस में इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 0172-268-7989। आकाशवाणी चंडीगढ़ के लिए निदेशक के निजी सचिव से इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 0172-260-1845। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए अभियांत्रिकी प्रमुख से इस नंबर पर संपर्क करें 0174-220-561। आकाशवाणी रोहतक के लिए अभियांत्रिकी प्रमुख से इस नंबर पर संपर्क करें 0126-230-229। आकाशवाणी हिसार के लिए अभियांत्रिकी प्रमुख इस नंबर पर संपर्क करें 0166-2254-275।
1: चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न आप सभी के लिए है। आरबीआई के गठन की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई थी? प्रश्न है साथियों आप सभी के लिए, आरबीआई के गठन की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई थी? हेलो,
2: गुड इवनिंग सर, राहुल बात कर रहा हूँ।
1: जी राहुल, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में और प्रश्न है आपके लिए, आरबीआई के गठन की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई?
2: क्या सर, दोबारा बताना।
1: आरबीआई का जो गठन हुआ उसकी सिफारिश किस कमीशन ने की थी?
2: क्रिप्स मिशन।
1: जी ये उत्तर आपका गलत है राहुल।
2: कोई हिंट है सर?
1: कमीशन का नाम ही आपको बताना है तो राहुल हिंट हम नहीं देंगे।
2: ठीक है, ओके, नहीं आता।
1: जी आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। हेलो साथियों, आप सभी के लिए प्रश्न है, आरबीआई के गठन की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई? आरबीआई के गठन की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई, ये आप सभी के लिए प्रश्न है।
3: हेलो।
1: हेलो
3: जी, मैं अविनाश तिवारी बोल रहा हूँ त्रिपुरा से।
1: जी अविनाश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न सुना आपने?
3: जी जी, वो इसका जवाब देखिए, मेरे हिसाब से तो रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी।
1: जी नहीं।
3: अच्छा ठीक है सर, तो दूसरे प्रश्न पर आते हैं।
1: जी आप दूसरे प्रश्न पर आइएगा और इस प्रश्न को लेकर हमारे दो साथी हमसे जुड़ चुके हैं। आरबीआई के गठन की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई थी, ये प्रश्न था सभी के लिए और इसका उत्तर रहेगा हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। और आपको बता दें कि आरबीआई स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल। और अगला सवाल आप सभी के लिए है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? हेलो।
3: हेलो
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताइए।
3: जी अभिनव बोला त्रिपुरा से। अभी सवाल क्या था?
0: सवाल है, पंचायत उन्नति सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है?
3: पंचायत राज्य उन्नति में किस स्थान, किस राज्य ने प्राप्त किया?
0: बिल्कुल, किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया,
3: मतलब ये कितने, कौन सा ईयर का बताना है?
0: जी हाल ही में अभी ये सूचकांक जारी किया गया।
3: अच्छा, पंचायत राज्य उन्नति में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया, मतलब हाल ही में?
0: जी बिल्कुल हाल ही में। जी पंचायती राज मंत्रालय ने इस सूचकांक को जारी किया है, आप राज्य का नाम बताएं।
3: राज्य का नाम मुंबई।
0: जी नहीं।
3: अच्छा तो फिर अरुणाचल प्रदेश।
0: जी नहीं जी, आपका ये सही जवाब नहीं है। एक और प्रयास आपकी ओर से।
3: कर्नाटका।
0: जी नहीं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
3: जी,
0: धन्यवाद। सवाल यही और अगले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो
4: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
4: सतीश बोल रहा हूँ मैडम।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश आज के इस कार्यक्रम में। सवाल है
4: हरियाणा मैडम।
0: जी हरियाणा सही जवाब नहीं है।
4: तो गुजरात।
0: जी नहीं, गुजरात भी सही उत्तर नहीं है।
4: मैडम एक गैस और लगा लूं?
0: जी बिल्कुल लगाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये नॉर्थ ईस्टर्न हमारा राज्य पड़ता है,

0: सिक्किम मैडम?
1: जी सिक्किम भी नहीं है।
0: थैंक यू मैडम। अगले
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नियमों के मुताबिक दो साथियाँ हो चुके हैं, त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
2: और साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज अनुच्छेद से महिमा हमने प्रश्न नहीं पूछा है, तो अभी इसके लिए प्रश्न पूछ लेते हैं। साथियों आप सभी के लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया? हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: जी नमस्कार, नाम बताइए।
3: नाम कृष्ण यादव जी बोल रहा हूँ जी।
2: जी कृष्ण, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। और प्रश्न है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया?
3: इसका थोड़ा हिंट मिल सकता है?
2: जी हिंट हम नहीं दे सकते कृष्ण,
3: एक बार और बताइए।
2: सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया?
3: ये तो नहीं आया सर, अगले पे आता हूँ।
2: जी बिल्कुल, आप अगले प्रश्न पर कोशिश कीजिएगा और इसी प्रश्न को लेकर हमारे दूसरे साथी से जुड़ेंगे। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: सर, राहुल बात कर रहा हूँ।
2: राहुल आपके लिए प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में
4: 128।
2: जी आप बिल्कुल पास हैं लेकिन 128 गलत है।
4: 129
2: जी बिल्कुल, अनुच्छेद 129 में ये वर्णित किया गया है।
1: और अगला सवाल है आपके लिए, हाल ही में ममीदाला जगदीश कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं?
4: साहित्य अकादमी।
1: पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र में उनके इस योगदान को सम्मान मिला है?
4: खेती समाज सेवा।
1: जी समाज सेवा तो सटीक उत्तर नहीं है आपका।
4: तो साहित्य खेती समाज सेवा साहित्य।
1: जी साहित्य भी सटीक उत्तर नहीं है, पर आप कोशिश कर सकते हैं।
4: ये राजस्थान के सीकर जिले के
1: जी, आप क्षेत्र बताएं कि उनका किस क्षेत्र में अमूल्य योगदान की वजह से उन्हें ये सम्मान मिला है।
4: ओके मैम, नहीं आता।
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ममीदाला जगदीश कुमार को हाल ही में पद्मश्री मिला है, किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा, सवाल ये है आप सभी के लिए। हेलो
5: हेलो
1: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताइए।
5: जी रामधारी बात कर रहा हूँ, गांव ढाणी के पुकुट तहसीला।
1: जी रामधारी जी, सवाल है आपके लिए, हाल ही में ममीदाला जगदीश कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र में उनका योगदान है? हेलो
5: किनको, जगदीश?
1: जी ममीदाला जगदीश कुमार किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है?
5: जी कला के क्षेत्र में।
1: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
5: थैंक यू मैम,
1: हमारे से जुड़ने के लिए यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। तो सही उत्तर है इसका, शिक्षा जगत में उनका योगदान अमूल्य है और वो UGC के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वहीं बात करते हैं पद्मश्री सम्मान की, तो हाल ही में कुल 131 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसके तहत पद्मश्री 113 हैं, पद्मभूषण 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्म विभूषण कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है।
2: और चलिए महिमा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आप हमें बताइए कि फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? आप सभी के लिए प्रश्न है साथियों, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? हेलो हेलो
6: हेलो नमस्ते जी।
2: जी नमस्कार,
6: सतीश बोल रहा था सर।
2: जी सतीश, आपके लिए प्रश्न है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है?
6: हिंद महासागर।
2: जी नहीं सतीश।
6: तो सर पश्चिम महासागर।
2: जी नहीं, एक और उत्तर आप बता सकते हैं
6: सर, अगले प्रश्न पे आता हूँ।
2: जी बिल्कुल, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा और इसी प्रश्न को लेकर हमारे दूसरे साथी से जुड़ेंगे। हेलो

0: हेलो
1: सर, राहुल बात कर रहा हूँ मैं।
0: राहुल, आपके लिए प्रश्न है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? जी नहीं, प्रशांत महासागर नहीं।
1: दक्षिण चीन मार।
0: जी बिल्कुल, दक्षिण चीन सागर जो है वो स्थित है फिलीपींस और वियतनाम के बीच।
2: और अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया?
1: उत्तर प्रदेश।
2: जी, थोड़ा सा
1: हेलो,
2: सटीक उत्तर बताएं।
1: लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2: लखनऊ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
0: और राहुल, अगला प्रश्न है आपके लिए, आपके बार जो है सागर का नाम हम बता देते हैं, आप देश बता दीजिएगा, मतलब वो जगह बता दीजिएगा। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल।
1: क्या ये है अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप
0: जी
1: समूह,
0: बिल्कुल,
1: बोला
0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को।
1: जी।
2: तीन सवालों के आपने दिए हैं यहाँ पर सही उत्तर। और आप एक बार अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं राहुल बात कर रहा हूँ, बिट्स पिलानी
2: राहुल,
1: साइंस।
2: आपको बहुत बहुत बधाई कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप
1: धन्यवाद
2: बनते हैं
1: सर।
2: आज के इस कार्यक्रम के पहले जीनियस। और आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आपके लिए है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च की है?
3: हेलो,
2: हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
3: कृष्ण यादव बात कर
2: जी
3: रहा हूँ,
2: कृष्ण
3: भिवानी से।
2: जी, ई श्रम साथी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है?
3: किस राज्य में?
2: जी, किस राज्य से संबंधित है ये एप्लीकेशन? ई श्रम साथी नाम है और श्रमिकों के लिए है ये।
3: हरियाणा।
2: हरियाणा नहीं है।
3: उत्तर प्रदेश।
2: जी नहीं। एक और प्रयास आपकी ओर से।
3: राजस्थान।
2: जी नहीं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो वक्त हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है, सवाल और उत्तर का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखें। इस सवाल का सही जवाब है छत्तीसगढ़। और अब दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी दीपांशु
0: दीपांशु और
2: और
0: महिमा
2: महिमा
0: को।
2: को।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10:00 शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे राग यमन। गायक होंगे हनीफ अहमद खां। साप्ताहिक समीक्षा आप सुनेंगे शाम 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर रीना चौहान के साथ बातचीत का विषय रहेगा कृषि रसायनों में सावधानियां। ग्रामीण संसार में शाम 7:00 फोन इन कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा। फिल्म संगीत कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकेंगे शाम 7:30 पर और रात 10:30 पर कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। वार्ताकार होंगी श्रीमती सुनीता सरोहा। सुबह सवेरे कार्यक्रम का समय रहेगा

0: प्रातः 7:25। लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे केनिंगटन स्टेडियम लंदन में ऑस्ट्रिया और वेस्टइंडीज़ के मध्य आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच का पहला सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर अमित कुमार के साथ बातचीत का विषय रहेगा धान की रोपाई में सावधानियां। खेत कल्याण कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर वर्षा जल संरक्षण विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:00 और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ स्थानीय सूचनाएं। थाना सदर जिला रोहतक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार जयदीप भाई मनदीप अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंगेहुआ हष्टपुष्ट शरीर। इन्होंने हरे रंग की टी शर्ट पहनी है और काले रंग का लोअर और पैरों में काले रंग की चप्पल पहनी है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले थाना सदर रोहतक में संपर्क करें। थाना लखन माजरा जिला रोहतक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार खुशबू पत्नी विकास दिनांक 30/5/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 22 वर्ष। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गोरा गोल चेहरा शरीर पतला कद करीब 5 फुट। इन्होंने पीले रंग का सूट और सलवार पहना है और पैरों में चप्पल पहनी है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले तो इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9254047179। एक बार नंबर फिर से बताएंगे, 9254047179। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। उससे पहले सुनते हैं ये एक संदेश।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्ट।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। आज 6वें सिख गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया और हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में संत शिरोमणि कबीरदास जी की जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर को मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत बताया। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक बैठक में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल

0: शर्मा मौजूद रहे। इस समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी, जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा समझौते के अनुसार पूरा सहयोग करेगा।
2: जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ये जाने के लिए ये एमयूस है। जो है पानी जो राजस्थान में जाएगा वो पीने के लिए उपयोग होगा। हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। आदरणीय सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस बिंदु के ऊपर जहां जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृष्णमूर्ति के बीच आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने हरियाणा के विकास में फ्लिपकार्ट की भागीदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में हरियाणा के किसानों, उद्यमियों और युवा शक्ति के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने, कौशल विकास और तकनीक आधारित आर्थिक विकास को गति देने पर सहमति बनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने ये भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। आज छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही से नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों की अगुवाई में अरदास के साथ नगर कीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा, समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक तथा हजारों की संख्या में संगत मौजूद रही। नगर कीर्तन शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा, शीतल जल और लंगर की सेवा कर संगत का स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि कुरुक्षेत्र ऐसी पवित्र धर्म नगरी है जहां सिखों के सभी 10 गुरु साहिबान पधारे हैं।
3: इसी कुरुक्षेत्र में संतान ने बहुत भाग्यशाली माने कुरुक्षेत्र की यह धरती है जिथे 10 से 10 गुरु साहबान आए ने। अकली एक धरती कुरुक्षेत्र भी है जिथे 10 पातशाह आए, उन्होंने चरण शुक्राव धरती है। इस करके इस धरती की बहुत बड़ी महानता।
0: पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सिख श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना पर कहा कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने उत्तराखंड सरकार से बातचीत की और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद विवाद का समाधान कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती मनाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर दास जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर मानव मात्र के सबसे बड़े मार्गदर्शक और सामाजिक चेतना के अग्रदूत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज की तकनीक और आधुनिकता के दौर में मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं, ऐसे में युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष संत कबीर जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भिवानी में मनाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने आज कबीर जयंती पर लोगों से संतों के बताए समरसता, प्रेम और सदाचार के मार्ग का पालन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संत शिरोमणि कबीर साहिब के प्रकट दिवस पर जींद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि समाज द्वारा पूर्व में रखी गई मांगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है और आज सौंपी गई नई मांगों को भी वे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। मीडिया से बातचीत में विधानसभा उपाध्यक्ष ने संत कबीर दास जी के विचारों की प्रासंगिकता पर बल दिया। संत कबीर दास जी के प्रकट दिवस पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के सोहना रोड स्थित सैनी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सदगुरु कबीर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्री गौरव गौतम ने कहा कि संत कबीर जी ने दोहे और साखियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके विचार मानवता, सत्य, प्रेम और समानता का संदेश देते हैं। संत कबीर ने समाज को बताया कि सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं।
4: जिस प्रकार सदगुरु कबीर जी ने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो संस्कार दिए, जो विचार दिए, उस पर आज लोग चलकर समाज को सकारात्मक भाव से आगे ले जा रहे हैं। आप सबका भाईचारा, एकता में जुटने का संदेश जो इन्होंने दिया है, हम उस पर काम।
0: आज अंबाला में केंद्रीय विद्यालय संगठन के गुरुग्राम संभाग की क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद सहायक आयुक्त दीदार सिंह चहल ने बताया कि प्रतियोगिता में 64 केंद्रीय विद्यालयों के 554 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
5: हमारा रीजनल चल रहा है, ये बॉयज का है और 554 प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 90 के करीब स्पॉट्स हैं। रीजनल ऑफिस गुरुग्राम में 37 विद्यालय हैं, वो हरियाणा के हैं और 27 केंद्रीय विद्यालय हिमाचल के हैं। इन्हीं 64 विद्यालयों से हमारे यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं और 15 गेम यहाँ पे हो रहे हैं। अभी रीजनल स्पोर्ट्स मीट के बाद जब ये बच्चे सिलेक्ट होंगे और बेंच मार्क को क्रॉस करेंगे, ये बच्चे KVS नेशनल्स के लिए जाएंगे।
0: प्रतियोगिता के समापन पर केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग में उपायुक्त चंद्रशेखर आजाद ने विभिन्न खेलों के विजेताओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। जापान के फुकुओका में तकनीकी क्षेत्र की 80% कंपनियों में तकनीकी रूप से कुशल मानव संसाधन की भारी कमी को दूर करने के लिए जापान के फुकुओका प्रीफेक्चर ने हरियाणा सरकार से युवाओं को उनकी जरूरत के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अनुरोध किया है। इससे अगले 5 साल में हरियाणा के 50,000 युवाओं को फुकुओका प्रीफेक्चर में रोजगार उपलब्ध होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे को लेकर समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना सुनिश्चित हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
8: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
9: RBI कहता है,
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि गत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों भाइयों भाई की राम राम। और भाई जो भी मेरे खेतीबाड़ी के फिलहाल काम चल रहे हैं और विशेषकर हम बात करें भाई कपास की तो नुड़ाई गुड़ाई का, और इसके अलावा भाई जो भाई अपना धान लगाने लग रहे हैं, कईयों की प्योत तैयार होने लग रही है, कोई अपना भाई कंप्यूटर गोड़ी मारने लग रहा है, कोई अपना खाद की खार की व्यवस्था करने लग रहा है। और बाकी इसके अलावा भाई एक की बात करा, दिन में भी चर्चा करी थी भी खाद पानी का जो प्रबंध है वो हमारा चल रहा है उसमें। और देखो भाई जितने भी हमारे काम हैं, धरती माता वाह है, मौसम के अनुसार भी मौसम बदल गया, फिर अपना मौसम भाई गर्मी आ गई, कदे सर्दी आ गई, बरसात का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु है, उससे के हिसाब से जो हमारे खेती बाड़ी के जो काम हैं वो चल रहे हैं। लेकिन भाई देखो कुछ काम ऐसे हुए हैं, पहले की बात करा तो भाई पहले बालकपण में जब डेढ़ महीने छुट्टी पड़िया करती तो नू कहते भाई तड़का कर लेंगे काम, परसों कर लेंगे, आखिरी वाले दिन वो हिसाब जंदा मतलब भाई सारा तड़का तो भाई लटकाने पड़ेंगे स्कूल में। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह बरसात का मौसम शुरू होगा ही इसी तरह जो खरपतवार हैं, भांग है, गाजर घास है, कई तरह के ऐसे खरपतवार हैं जो शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में ये रहेगा कि हम अनदेखी कर देंगे। कपास में हम बात करा भाई जो अपने खड़ी फसल है, छोटी मोटी सांटी है, कोई कोंदरा है, कोई बेल है, इस तरह के जो खरपतवार हैं शुरू मतलब सोखे की अवस्था में तो बिल्कुल वो सुप्त बैठे हैं, या फिर थोड़ी बहुत बारिश होगी और ऊपर तक घनी धूप पड़े है तो जब ऐसे बैठे जो तो भैया सांटी बिल्कुल ख़त्म होगी वो एक होनी, लेकिन जिस तरह एम ही पड़ेगा बारिश होगी मानसून की तो उससे तरह उसक्रिय हो जाएंगे। और भाई 5-10 दिन का जो जड़ लाग जा या 10-15 दिन भाई धरती बाहर नहीं आवे तो उसमें ऐसा गुआ गप हो जाएगा कि पैर टेक दिया भी डर लागा कदे भाई को कीड़ा कांडा हो। इसी तरह मेरे जो खांड है कई एरिया में भी खांड कहते हैं, कितने नाली कहते हैं, कितने धरना कहते हैं, तो जो हमारी जरनेली नाली हैं, सीर की हैं, सांझली हैं, पक्के खाड़ हैं या फिर जो कच्चे खाड़ हैं उनमें जो भी खरपतवार नियंत्रण करना, खरपतवार नियंत्रण में देखो भाई नाली दाने हैं उन पर तो कोशिश भाई ये रखें भी कस्सी दे दोनों ओर की बरम काट के पक्की पर भी अपना पटड़िया बदांती तो काट दे भीतर कस्सी फेर दें, नहीं तो उसमें खरपतवार नाशी जो दवाई हम डालने हैं उसमें फिर वो अगर पक्की हैं तो सीमेंट उसकी ख़त्म हो जाए है, पास बेरा नहीं पाटता भी गुरलू कड़ा हो रहा है और कड़तिया दिक्कत हो रही है और इसी तरह कच्चिया में। तो चलो बाकी भाई इसमें बात और भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले भाई आज साप्ताहिक समाचार समीक्षा भी आनी है, भजन का मनोरंजन करवा दें, भजन रागनी सुनो गायक कलाकार चांद सांवरे, और उसके बाद भाई साप्ताहिक समाचार समीक्षा जो कि आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र तय रिले करी जाएगी।

प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी। देश में पिछले 12 वर्षों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में समग्र विकास को लेकर सैकड़ों योजनाओं को लागू किया गया है। इन सभी योजनाओं को अंत्योदय की भावना से लागू किया गया है ताकि अंतिम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालते ही जहां योजनाओं को लागू करते समय समाज की अंतिम पंक्ति के बारे में सोचने का संदेश दिया, वहीं कोरोना महामारी में 80 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त में अनाज देकर ये संदेश दिया कि आपदा के समय में सरकार उनके साथ खड़ी है। देशवासियों को इस योजना का लाभ निरंतर मिल रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब परिवारों के आशियाने के सपने को पूरा किया जाता है। सरकार की ओर से झुग्गियों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लागू की गई हैं ताकि वे आर्थिक रूप से संबल होने के साथ परिवार की भी अच्छी तरह देखरेख कर सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नगद राशि दी जाती है। इस योजना के तहत बच्चे के पहले जन्म पर 5002 किश्तों में सीधे बैंक खाते में जमा होते हैं। दूसरे बच्चे के जन्म पर भी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही हर गैस सिलेंडर रीफिल पर 300 रुपए के नगद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 1 मई 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य लकड़ी, कोयला, फसल अवशेष और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है और महिलाओं को धुएं के दुष्प्रभावों से बचाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 5 करोड़ गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ लाभार्थियों तक कर दिया गया। इस योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं स्वरोजगार की दुनिया में अच्छा कर पाएं, इसके लिए 15 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। सरकार महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देने के साथ ही बिना ब्याज के ऋण प्रदान करती हैं। कई महिलाएं इस स्कीम का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य देश की 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। पिछले लगभग 1 वर्ष में राज्य में 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 5000 महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में प्रदेश की 100 महिलाओं को ड्रोन चलाने में दक्ष बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुफ्त में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से करोड़ों युवाओं ने अपने स्किल बढ़ाकर रोजगार पाया है। PM मुद्रा योजना के तहत युवाओं को रोजगार में आगे बढ़ाने और आर्थिक संबल देने के लिए सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से 20 लाख तक का बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बुजुर्गों के लिए जहां आयुष्मान भारत योजना बेहद कारगर सिद्ध हो रही है, वहीं अटल पेंशन योजना के तहत महज 210 रुपए महीने देकर 60 की उम्र के बाद 5000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों ने विकास, जन कल्याण और नागरिक केंद्रित शासन के एक नए युग की शुरुआत की है। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं के लिए नए अवसर सृजन तक, हर क्षेत्र में बदलाव, विकास और आत्मविश्वास की एक नई गाथा लिखी गई है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: एक बार फिर से भी कृषि कार्यक्रम में भैया का स्वागत है। भैया ने साप्ताहिक समाचार समीक्षा सुनी जो कि अपना आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र से रिले करी गई, और बाकी भी खेतीबाड़ी में हम जिक्र कर रहे थे कि भाई जो भी हमारे मौके के काम हैं, देखो जो बिजाई का है और खाद का है, उर्वरक का है, छिड़काव का है, इस तरह काम हम पूरा जागरूक भी रहे हैं, समय पर करे भी हैं। लेकिन क्या हो के कई बारिश हो जाए, जिस तरह हमने जिक्र कराया, लंबी जड़ी लग गई, खेत की साफ

0: कर्म के पास फसल की नुड़ाई गुड़ाई का काम है, जितना भी उसमें भाई धरती बत्तर आ जाए है उससे इतना भी मान लो आड़ती बीच के जो पाड़े हैं वो मारने, या फिर कुछ बेल इसी हैं जो बिल्कुल जड़ के सट के पाऊँगी, शुरुआती दौर में तो छोटी ही पाऊँगी लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जिस तरह मौसम अपना भाई लंबा जड़ जाल लगा पेड़ियाँ पचड़ जाएंगी और नुए ने मेरा पाटा भाई कड़े इसकी जड़ है और किन किन पेड़ियाँ पर जारी है। कुछ बम्बूड़ से के पेड़ हैं, गाजर घास के हैं, कई तरह के जो खरपतवार हैं इस मौसम के वो बाकी देखो भाई कुछ साल तक घास की प्रजाति सी आ गई, पहले हमने सब घासा बेर था भाई चापड़ है, तकड़िया है, दूब है, डिल्ला है, अंजन है, जितने भी भाई बुई जामे आ करती ऊपर खील सी लग गया करती, जितना भी हमने पिल पोटन का है सब पता हुआ करता, लेकिन कुछ जो घास हैं जिस तरह बाढ़ के बाद में 1995 में गाजर घास आया और ईब मरुआ भर के पत्ते वाले कई तरह के से घास आ रहे हैं जो ना तो भाई पशुओं ने खुआन के और ना वो को चारा में ना किसी रूप में इस्तेमाल हम कर सकते, तो शुरुआती दौर से जो नुड़ाई गुड़ाई का काम है वो हम करते रहे। तो बाकी भाई इसमें जिक्र और भी करेंगे लेकिन उससे पहले भैया ने बातचीत एक सुनवा दे हैं कि देखो भाई खेती बाड़ी के साथ में कृषि वानिकी की अगर बात आओ है, कृषि वानिकी का यदि हम सारा ले हैं तो उसमें भाई जल जो एक सोखण की ताकत है वह बढ़ेगी, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और इसके अलावा भाई जो एक ज़मीन की कटण की समस्या है चावे नीचे चले जाएंगे जड़ गणे ऊपर आ रहे हैं रे कलर की चास भी से मिटेगी, तो इसमें एक भैया ने बातचीत सुनवा दें, डॉक्टर साहब बैठे हैं तो सुने भैया बातचीत।
1: आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा वन विभाग से मिलने वाली सुविधाएं और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमान सुंदरलाल जी को। आप DFO हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं आप और रोहतक में कार्यरत हैं, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो जब हम वन की बात करते हैं तो एक बहुत ही एक घना और बहुत सी हरियाली और इस तरह का एक दृश्य है वो हमारे सामने आता है, तो फिलहाल हमारे प्रदेश में वन क्षेत्र की क्या स्थिति है ये जानना चाहेंगे।
2: जैसा आपने बताया कि हम वन की बात करते हैं तो हमारे को ये लगता है कि एक पूरा गहरा
1: जी
2: पेड़ों का एक बहुत बड़ा समूह का एक जंगल होगा।
1: जी
2: हरियाणा में ऐसे जंगल हैं लेकिन क्योंकि हरियाणा एक एग्रीकल्चर स्टेट है या पूरा खेतीबाड़ी की ही ज़मीनें हैं सारी
1: जी,
2: तो हरियाणा में एज सच इस तरह के जो ट्रेडिशनल जो जंगल हैं वो हमारे पास कम है
1: जी।
2: खास तौर पे जो शिवालिक का क्षेत्र है हमारा
1: जी,
2: या अरावली का क्षेत्र है उसमें इस तरह के जंगल हैं जैसे आप अभी हमें बता रहे हो आप, और बाकी हरियाणा को अगर हम देखते हैं खासतौर पे अगर हम रोहतक के बारे में ही बात कर रहे हैं, आज रोहतक में बैठे हैं हम
1: जी,
2: तो रोहतक का जो मेजोरिटी वन क्षेत्र हम जिसको कहते हैं वो या तो सड़कों के किनारे जो हम प्लांटेशन करते हैं
1: जी,
2: या नहरों के किनारे पर करते हैं या इसके साथ साथ जो रेलवे की लाइन रेलवे लाइन्स हैं उनके किनारे हम जो प्लांटेशन करते हैं वो हमारा वन क्षेत्र है
1: जी।
2: ट्रेडिशनल जंगल की बात करें तो हमारे पास दो ऐसे जंगल हैं छोटे हैं
1: जी,
2: बहुत बड़े नहीं है, 420 एकड़ का एक गरनावटी में हमारा एक वन क्षेत्र है
1: जी,
2: और जो ब्लॉक में है और एक हमारा लाखन माजरा में है जो लगभग 100 एकड़ के आसपास है, तो टोटल मिला के जो हम अगर रोहतक को देखते हैं तो रोहतक में हमारा लगभग 4500 हेक्टेयर के आसपास का जो क्षेत्र है जिसको हम वन क्षेत्र मान के चलते हैं।
1: तो पिछले अगर कुछ वर्षों की बात करें तो कितना बदलाव आप इस वन क्षेत्र में देख रहे हैं?
2: बदलाव की जहाँ तक बात है तो क्योंकि हरियाणा ऑलरेडी जैसे मैं बता रहा हूँ कि हरियाणा में ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम है
1: जी
2: और फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं वो भी कम है हमारे पास
1: जी,
2: तो हरियाणा में जब से हरियाणा बना है तो पूरी हरियाणा में एक जो पॉलिसी है उसमें हम लोगों का पूरा विभाग का ये प्रयास रहा है कि हमारे पास वन क्षेत्र तो इतना है नहीं, हमें अपना जो ट्री कवर है उसको बढ़ाना है
1: जी,
2: तो पूरा डिपार्टमेंट शुरू से ही इस तरह की प्लांटेशन स्कीम्स पे काम करता है कि वो जो एरिया वनों से बाहर का एरिया है जैसे पंचायत की कुछ ज़मीनें हैं या जिसको हम विलेज फॉरेस्ट कहते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की कोई ज़मीन पड़ी हुई है या फिर किसानों के खेत हैं उन सबको मिला के जो हम लोग अपना जो ट्री कवर है उसको बढ़ाने की कोशिश पिछले कुछ दशकों से कर रहे हैं और उसमें हमें कामयाबी भी मिली है, क्योंकि अगर वैसे आप मोटे तौर पे देखते हैं तो जैसे वन क्षेत्र की बात करते हैं तो हरियाणा का वन क्षेत्र लगभग 3.63% के आसपास का है।

0: जी, जिसको हम ट्रेडिशनल फॉरेस्ट की बात करें। लेकिन ट्री कवर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ट्री कवर को अगर साथ मिला लेते हैं तो लगभग हम 7% के आसपास पे जाते हैं। ट्री कवर वो क्षेत्र है जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर का क्षेत्र है, उसमें पंचायतों की ज़मीनें भी आ गई और किसान के खेत भी आ गए। तो पूरे जो विभाग के जो हमेशा की जो वर्किंग जो प्लान रही हैं उसमें इसी के ऊपर हम केंद्रित रहते हैं कि हमारे को अपना वन क्षेत्र तो हम बढ़ाने में कामयाब इतना नहीं हो सकते क्योंकि ज़मीनें नहीं हैं, तो हम जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाएं,
1: उस पेड़ों की संख्या है वो बढ़े, वो उसके बढ़े। लिए हमें प्रयास करने चाहिए।
0: एग्जैक्टली
1: जी, तो इसके लिए हम कौन कौन सी आपके विभाग की योजनाएं हैं जिसका कि फायदा किसान भाई उठा सकते हैं और वन क्षेत्र भी बढ़े यानी कि पेड़ों की संख्या भी बढ़े और किसानों को लाभ।
0: एग्रोफोरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा, चाहे वन क्षेत्र हरियाणा का कम है लेकिन एग्रोफोरेस्ट्री में हरियाणा पूरे कंट्री में पायनियर स्टेट है। हमारी एग्रोफोरेस्ट्री एकदम एक एग्जाम्पल है और हमारी इस एग्रोफोरेस्ट्री की वजह से ही यमुनानगर में जो टिम्बर मार्केट है
1: जी,
0: वो ऐसा लगता है कि मतलब एशिया की एक बिगेस्ट मार्केट है, वो जो डेवलप हुई है
1: जी।
0: और उसका जो मेजोरिटी रॉ मटेरियल है उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं किसानों के खेतों के थ्रू। हालांकि हमारे पास फॉरेस्ट एरिया नहीं है फिर भी हम एक तरह से एक वुड सरप्लस स्टेट हैं। फॉरेस्ट एरिया ना होते हुए भी जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पे हम काम करते हैं वो उसी की देन है।
1: ये मतलब एक बहुत बड़ी बात
0: है, ये उसी की देन
1: है, हम इसको मान सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल इसको हम मान सकते हैं
1: जी। और जिस तरह आपने बताया कि कृषि वानिकी का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान,
0: बहुत योगदान है इसमें। पूरे हरियाणा में ही कृषि वानिकी में पिछले दशकों में जो काम हुआ है उसमें, चाहे हमारा शिवालिक का रीजन है या ये सेंट्रल हरियाणा का है या हरियाणा के बाकी हिस्से भी हैं, तो जो किसान इसमें आगे आया और जिसको लगा कि हाँ ये एक मेरा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है
1: जी
0: अपनी खेती के साथ साथ, तो जो किसान इसको पहले समझ गए वो लोग इसमें काफ़ी काम उन्होंने किया
1: जी।
0: उन्होंने अपनी ज़मीनों को रोटेशन पे साल दर साल वो इसमें कृषि वानिकी के तहत या खुद भी वो उसमें पौधे लगाते हैं, उसको बाकायदा मैच्योरिटी के तक ले जाते हैं और उसके बाद में उसकी फैलिंग होती है और जो संबंधित कंपनियां जो इसमें काम करती हैं वो उनके मटेरियल को लेके जाती हैं। तो ये पूरा ट्रेंड चला रहा है
1: जी।
0: अगर जैसे रोहतक के बारे में बात करते हैं तो रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक है या झज्जर है, क्योंकि टोपोग्राफिकली रोहतक एक सोसर शेप्ड है, तो इसमें हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस हैं वो लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है।
1: पानी भरने की समस्या है
0: खेतों में, जिसको हम ग्राउंड वाटर टेबल बोल रहे हैं। ग्राउंड वाटर टेबल है वो लगभग जो क्रॉप हमारी होती है उसकी रूट जोन में आ गया है
1: जी।
0: मतलब जो टोटल, हाँ जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया रोहतक जिले का है उसका लगभग लगभग 52% के आसपास क्रिटिकली वाटर लॉग्ड है। ऐसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की
1: वो ऊपर आ गया,
0: वो बिल्कुल मतलब अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे जिले का है उसका 52% एरिया अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन में है तो बहुत अलार्मिंग हो गया। ये
1: 52 का मतलब ये हो गया कि
0: आधे से ज्यादा
1: हमारा जो खेती का जो जमीन है उसमें चवा है वो ऊपर आ गया।
0: बिल्कुल आ गया वो, क्योंकि उसको वो जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो वाटर टेबल होती है वो 0 से 1.5 मीटर के लेवल पे आ जाती है
1: जी।
0: यानी कि जो चवा हम बोलते हैं वो 0 से 1.5 मीटर में आ जाता है
1: जी।
0: और अगर 0 से 1.5 मीटर में चवा रहेगा तो आप कोई भी जो फसल लगाते हैं उसकी जो रूट जोन है वो पूरी चौक हो जाएगी, क्योंकि ना तो उसमें परकोलेशन है रेन वाटर का या कोई भी, सब चीज़ वहाँ पे रुक गई क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पानी आ चुका, परकोलेट होके फर्दर कहाँ जाएगा
1: जी।
0: तो क्रॉप यील्ड है वो इफेक्ट हो रही है अब,
1: उत्पादन उसमें कम मिल रहा है।
0: बिल्कुल हो रहा है और शायद फ्यूचर में और भी अलार्मिंग हो सकता है।
1: तो ये अच्छा, आपने अभी बात किया था जो एग्रोफॉरेस्ट्री का यानी कि कृषि वानिकी का, तो उसमें कौन कौन सी फसलें लिए जा सकती हैं?
0: रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक मैंने आपको जैसे बताया कि वाटर लॉगिंग का इशू है
1: जी।
0: और वाटर लॉगिंग में भी एक और जो अलार्मिंग इशू वो ये है कि इसमें रोहतक का जो ग्राउंड वाटर टेबल है
1: जी,
0: जो ग्राउंड वाटर है वो सेलाइन है,
1: जमीनी पानी खा रहा है,
0: बहुत खा रहा है
1: जी।
0: और जो जमीनी पानी खा रहा है तो खारे पानी में कोई फसल हो या कोई पेड़ हो
1: जी, दोनों
0: ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसमें क्या आएगा
1: जी
0: और क्या लगाएंगे हम पेड़
1: जी,
0: तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।

0: अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, जैसे आप बता रहे थे यमुनानगर जो जिला है उस तरफ हो सकता है ये, तो वहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो कौन कौन से पेड़ है वो लगा सकते हैं अपनी खेती के साथ में?
1: सरकार की पीछे पॉलिसी, जितनी भी हमारी सरकार की पॉलिसी रही हैं,
0: जी
1: अभी भी सरकार का जो प्रयास है, तो पहले जो एक्चुअली ये जो किसान खेत में पेड़ लगाता है,
0: जी
1: ये डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में डिमांड क्या है,
0: कितनी मांग है उसकी?
1: मार्केट में किस प्रजाति की डिमांड है, और क्या उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने खेत में वो पेड़ तैयार कर सकता हूँ,
0: जी
1: उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में पिछला, जैसे मैंने जिक्र किया कि यमुनानगर हमारी एक बड़ी मार्केट है टिम्बर की,
0: जी
1: तो यमुनानगर में एक्चुअली जो पल्प वुड का जो काम होता है, जो प्लाईवुड के लिए यूज करते हैं,
0: जी
1: या कुछ पेपर इंडस्ट्रीज भी अपना पल्प लेती है यहाँ से, उसमें मेजोरिटी वो यूकेलिप्टस, जो सफ़ेदा
0: सफेदा
1: हम बोलते हैं, और
0: जी
1: पॉपुलर, इन दो क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो हरियाणा में मेजोरिटी जो एग्रोफॉरेस्ट्री में काम हुआ वो इन्हीं दो प्रजातियों पे हुआ, रोहतक, झज्जर या सोनीपत, या जी सेंट्रल हरियाणा का पार्ट, या पार्ट ऑफ भिवानी है, पार्ट ऑफ हिसार है,
0: जी
1: या और पार्ट ऑफ सिरसा है, इसमें जो जो एरिया सूटेबल है उसमें पिछले बहुत सालों से सफ़ेदे पे काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन भी है, और
0: जी
1: वाटर लॉगिंग कंडीशन में अगर कोई प्रजाति जिंदा रहती है और जो किसान को कुछ इनकम कंट्रीब्यूट करती है,
0: जी
1: तो वो सफ़ेदा ही है,
0: जी
1: तो सफ़ेदे पे यहाँ काम होता है। और जो शिवालिक वाला पूरा एरिया है, उसके अंदर सफ़ेदे के साथ साथ पॉपुलर भी लगाते हैं। कुछ किसान अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं,
0: जी
1: कुछ और भी क्रॉप लगा रहे हैं, और सरकार की अब की बार मंशा है कि हम यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस करना जा रहे हैं, जिसको बर्मा ड्रैक बोलते हैं,
0: जी
1: उसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है। तो बर्मा ड्रैक को भी वायबिलिटी देखेंगे कि वो अगर इस एरिया में हमारा कामयाब होता है,
0: जी
1: तो हम एक और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक ट्री का, जो किसानों को कंट्रीब्यूट करेगा।
0: जी अच्छा, जैसे आपने बताया कि क्योंकि खेतीबाड़ी का एरिया है सारा ये, तो खेतीबाड़ी के साथ में अगर हम पेड़ लगाना चाहें तो उसकी डोल पर कौन कौन से पेड़ हैं वो लगाएं, ताकि एक तो तेज़ हवा या जो लू हैं उनसे बचाव हो, और दूसरा कुछ अलग से मुनाफा मिल जाए?
1: वो एक शेल्टर बेल्ट हो गया जैसे,
0: जी
1: क्योंकि शेल्टर बेल्ट पे हम सफ़ेदे की प्लांटेशन अगर यहाँ हम किसान अपने खेत में करता है, तो कुछ किसान डोल पे भी लगाते हैं,
0: जी जी
1: कुछ किसान ऐसा भी करते हैं कि वो पूरे खेत में लगाते हैं, क्योंकि जब उसकी इनकम कैलकुलेशन हम करके चलते हैं, तो इनकम कैलकुलेशन में जो हम एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं, तो उससे कहीं इसकी जो हमारे
0: पैदावार
1: को
0: है जो,
1: पैदावार है
0: जी
1: वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें क्या है कि रख रखाव पे जो हमारा एनुअल खर्च होता है, वो एनुअल खर्च इस पे फिर नहीं होता।
0: जी
1: इसमें जैसे पहले साल लगा दिया, तो हमारे को 2 साल थोड़ी गहनता से देखने की ज़रूरत है, उसके बाद के सालों में ये पेड़ अपने आप बढ़ते रहते हैं।
0: कोई
1: तो
0: ऊपर से
1: यहाँ
0: कुछ
1: पे, हाँ यहाँ
0: देना नहीं
1: पे
0: चाहिए?
1: जैसे सेल्टर बेल्ट में अगर किसान लगाना चाहें,
0: जी
1: तो रोहतक जैसे ज़िला है, रोहतक ज़िले के अंदर तो सफ़ेदा लगा सकते हैं,
0: जी
1: या वाटर लॉगिंग है यहाँ पे, सैलिनिटी है, उसके देखते हुए हम जामुन लगा सकते हैं। जामुन एक अर्निंग भी देता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि अगर आप मार्केट में आप देखोगे अच्छी किस्म का जामुन
0: जी
1: आप कहीं भी बिकता है,
0: जी
1: तो वो 100 रुपये किलो तक भी बिक रहा होता है,
0: बिल्कुल
1: तो जामुन पे भी हम जा सकते हैं। कुछ और क्रॉप भी लगा सकते हैं हम, जैसे करौंदा जैसी कुछ चीज़ें भी लगा सकते हैं,
0: जी
1: कुछ आंवला पे भी हम काम कर सकते हैं, आंवला भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, अमरूद भी यहाँ पे लग जाता है,
0: जी
1: तो अमरूद भी लगा सकते हैं। तो मेजरली मतलब सैलिनिटी वाले पार्ट में हम किसान इस तरह की कुछ क्रॉप लगा सकता है, और उसका दूसरा रोल भी रहता है,
0: जी
1: क्योंकि रोहतक में अगर हम देखते हैं, तो खेतों में जब धान का पूरा प्रचलन है यहाँ पे,
0: जी
1: और धान के खेतों में कंबाइन से काम करता है किसान,
0: जी
1: वो जो मशीन आती है, तो उसका रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो यहाँ आप देखेंगे दूर दूर तक खेतों में कोई पेड़
0: कोई
1: नज़र
0: पेड़
1: नहीं
0: नहीं?
1: आता।
0: जी
1: तो वो ठीक है, एक मशीन के लिए वो ठीक हो सकता है शायद, किसान
0: जी
1: को लगे कि उसमें कटाई वटाई में उसको आसानी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देख के चलें,
0: जी
1: तो वो अगर किसान गेहूं और धान को छोड़ के अगर और कोई सब्जियां या कुछ भी तैयार करता है, तो उसमें उसको दिक्कत आती है,
0: जी
1: क्योंकि उसके पास से जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो परागकण फैलाने वाले कीट हैं, उसके लिए तो कोई आश्रय स्थल नहीं है ना, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: ना उसके आसपास कोई जंगल है बड़ा, और ना उसके खेत में खुद के कोई पेड़ हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको ये दिक्कत आती है कि उसकी जो सब्जियां हैं, या कई बार जो फल के भी पेड़

0: लगाते हैं,
1: जी
0: तो फल के पेड़ों में भी फल उस मात्रा में नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पोलिनेशन में इश्यू आते हैं,
1: जी
0: क्योंकि पोलिनेटर नहीं है
1: पर परागण की
0: उसके।
1: क्रिया है
0: हाँ
1: जो
0: यस,
1: वो
0: वो
1: नहीं
0: जो
1: हो पाती
0: इंसेक्ट
1: है।
0: करता है
1: जी
0: वो इंसेक्ट के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, उसको हमने कोई आश्रय नहीं दिया,
1: मोटे
0: उसके
1: रूप
0: लिए
1: से
0: कोई
1: कहें,
0: पेड़ नहीं रखा।
1: मोटे रूप से अगर हम कहें तो मधुमक्खी है या तितली है,
0: हाँ बिल्कुल,
1: वो जो जीव हैं वो हमारे खेतों में नहीं रहे। और बड़ा कारण ये है कि कहीं पर बीच में पेड़ नहीं छोड़े हमने। और इसके अलावा एक और बात है कि बहुत सारे पक्षी होते थे जो कि हानिकारक कीटों को खा लेते, तो वो
0: अभी
1: उनकी भी
0: उसमें
1: समस्या
0: भी
1: बड़ी है।
0: डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं रोहतक में पोस्टेड हूँ, मैं झज्जर में भी रहा हूँ,
1: जी
0: तो इस एरिया में एक और भी समस्या आती है। पक्षी वास्तव में जो रेजिडेंट पक्षी हैं हमारे, वो कुछ कम हो रहे हैं यहाँ पे। और
1: चिड़िया
0: उसका
1: तो शहरों
0: ख़ास
1: में
0: तौर
1: दिखाई नहीं
0: पे
1: देती।
0: जो ग्राउंड ब्रीडर हम बोलते हैं,
1: जी
0: जो ज़मीन पे घोंसला बनाते हैं,
1: जी
0: उनको बहुत दिक्कत है यहाँ पे। मतलब चिड़िया की आप बात कर रहे हो, चिड़िया तो हम पुराने अगर परिवेश में जाते हैं
1: जी
0: तो चिड़िया हमेशा हमारे जो घर होते थे उसमें कुछ एरिया ऐसा होता था जो कच्चा किस्म का होता था,
1: जी
0: उसमें उनको घोंसले बनाने की जगह मिल जाती थी।
1: जी
0: मतलब अब वो जगह हम कंक्रीट पे आ गए तो हमारे घरों में तो वो जगह ख़त्म होगी।
1: जी
0: दूसरा रहा कि जो खेत थे, खेतों के अंदर जो ग्राउंड पे नेस्ट बनाते हैं पक्षी, जैसे अपना राज्य पक्षी तीतर है,
1: जी
0: बटेर है,
1: जी
0: या दूसरे वाला तीतर है,
1: टटीरी
0: या
1: है।
0: टटीरी है,
1: जी
0: और बहुत सारे पक्षी होते हैं जो ग्राउंड पे नेस्टिंग करते हैं। तो वो जब नेस्ट बना रहे होते हैं, तो एक प्रचलन है इस क्षेत्र में कि जब हम फसल को काटते हैं
1: जी
0: तो जो फसल का जो रेजिडू बचता है उसमें आग लगाने की एक प्रथा भी है,
1: पराली जलाने
0: जो
1: की जो
0: पराल
1: होती है।
0: जलाते हैं।
1: जी
0: जो पराल जलता है ना, उसके
1: जी
0: अंदर सब कुछ नाश हो जाता है, ज़मीन पे जो कुछ भी है।
1: जी
0: तो वो मान लो एक पक्षी का एक नेस्ट ज़मीन पे है और उस दौरान वो आग फैल गई, तो वो पक्षी तो खुद उड़ के अपनी जान बचा पाता है, पर अगर उसके घोंसले में अंडे या उसके चूजे हैं
1: जी
0: तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो नहीं बच पाते और उसका मतलब वो सीज़न ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।
1: जी
0: इसलिए पक्षी ऐसे एरिया में जब ये समस्याएं आने लगती है तो वो लिटिल बिट माइग्रेट करके सेफर प्लेस पे जाने की कोशिश करता है।
1: वहां से चले
0: इसलिए
1: जाते हैं।
0: हमारे को लगता है कि
1: जी
0: हमारे को पक्षी नहीं दिख रहा है यहाँ,
1: जी
0: उसका नंबर कम है, तो वो नंबर कम इस वजह से होता है कि वो कहीं बाहर के एरिया में चला जाता है,
1: जी
0: क्योंकि ये प्रक्रिया साल दर साल होती है।
1: जी
0: हालांकि सरकार ने बहुत प्रयास किया है और सरकार ने बहुत किसानों के लिए भी कुछ पॉलिसीज लाई है,
1: जी
0: इंसेंटिव भी सरकार दे रही है कि ये पराल वाला जो है इसको जलाने के बजाय इसका बहुत यूज़ और यूज़ हैं
1: जी
0: उसके शेप में आए, तो सरकार के प्रयास हैं
1: जी
0: और पिछले कुछ सालों में वो रिडक्शन हुआ भी है,
1: दिखाई भी दिया वो।
0: दिखाई भी दे
1: जी
0: रहा है वो,
1: जी
0: लेकिन जो नुकसान पीछे हो चुका
1: जी
0: उसकी भरपाई है उसमें बड़ा समय लगेगा।
1: उसमें टाइम लगेगा। अब बात करेंगे कि जो किसान भाई इस तरह के वृक्ष लगाना चाह रहे हैं उन्हें कहाँ से ये वृक्ष मिल सकते हैं, कहाँ संपर्क किया जाए।
0: सरकार की ना पॉलिसीज में पहले भी था, पिछले
1: जी
0: साल तक भी हम लोग क्लोन का सफ़ेदा, रोहतक में तो क्लोन का सफ़ेदा ही हम लगाते थे,
1: जी
0: क्योंकि क्लोन का जो सफ़ेदा होता है उसकी एक खासियत है कि वो एक तो जो खारा पानी है ज़मीन का
1: जी
0: उसमें स्टैंड करने में हमारे को चूज़ करने में आसानी होती है कि हम कौन सा क्लोन लगाएं।
1: जी
0: तो वो जो क्लोन का सफ़ेदा जो यहाँ चल सकता है सेलिनिटी में, वो हमारे सिलेक्टेड क्लोन्स थे, हम उस पे काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी किसानों के खेतों में क्लोन के सफ़ेदे लगाए हैं।
1: जी
0: अब भी हमारा प्रयास है कि ऐसे किसानों को आइडेंटिफाई करके और हम इस स्कीम में आगे बढ़ेंगे, तो सरकार की तरफ से जैसे ही अब इसके आगे के आदेश आएंगे हम इसमें आगे काम करेंगे। अभी भी हमने अपनी नर्सरियों के अंदर किसानों के लिए काफ़ी किस्म के पौधे हमने तैयार किए हैं जो इस एरिया के अंदर लग सकते हैं,
1: जी
0: सैलाइनिटी में लग सकते हैं, वाटर लॉगिंग को एक लेवल तक मीट मतलब स्टैंड करते हैं। तो ऐसी प्रजातियां हमने अपनी नर्सरी में तैयार की हुई है जिसमें सफ़ेदा भी है,
1: जी
0: जामुन भी है, अमरूद भी है, और कुछ और भी प्रजातियां हैं, तो वो हम किसानों को भी उपलब्ध करवाएंगे।
1: तो उसका कोई तरीका है किस प्रकार से संपर्क किया जाए, कहाँ संपर्क किया जाए।
0: इसके लिए ना हमारे 7 नर्सरियां हमने ज़िले में बना रखी हैं,
1: जी
0: और 7 नर्सरी में पिछले सालों में भी रहा है कि जो क्षेत्र जिस नर्सरी के नज़दीक है वो उस नर्सरी में जाके एक एप्लीकेशन लिख के और अपना कि भाई यहाँ मेरी ज़मीन है, यहाँ मुझे पौधा लगाना है,
1: जी
0: वो एक एप्लीकेशन वहाँ दे सकता है, कोई भी किसान भी दे सकता है, कोई अगर इंस्टीट्यूशन

0: है या कोई इंडिविजुअल है वो जिसके पास जगह उपलब्ध है वो भी दे सकता है और वो वहाँ से पौधे ले सकता है। तो हमारी ये पॉलिसी है अभी भी।
1: जी
0: तो इस साल भी हम करीबन 1.5 लाख के आसपास पौधे हमने तैयार किए हुए हैं
1: जी
0: इसी पर्पज़ से कि
1: जी
0: जो हम लो आम जनमानस जो कि रियल सेंस में पौधा
1: पौधा लगाना चाह
0: लगाएगा
1: रहे हैं।
0: उसको उपलब्ध करवाएंगे। उसमें हम बाकायदा हमारा जो स्टाफ नर्सरी में बैठता है गार्ड है हमारे
1: जी
0: या दरोगा या रेंज ऑफिसर के लेवल पे
1: जी
0: वो कोई पौधा लेने जाता है तो उससे कुछ क्वेश्चन भी वो रखते हैं कि
1: जी
0: आप कहाँ लगाओगे ये अश्योर करने के लिए कि ये पौधा वास्तव में कहीं लगने जा रहा है
1: काम की जगह पे
0: काम की
1: लगे।
0: जगह पे लगने
1: जी
0: जा रहा है। तो वो
1: जी
0: क्वेरी भी करते हैं। तो
1: जी
0: हमने वो मतलब पर्याप्त उसकी प्रिपरेशंस की
1: तैयारी
0: हुई
1: कर
0: है
1: रखी।
0: जिले में।
1: जी अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि इस तरह से पेड़ लगा लेते हैं और फिर कभी ज़रूरत पड़ती है या वो उसको टूट जाता है, तो उसकी जो बिक्री की एक व्यवस्था होती है उसके लिए क्या कुछ नियम हैं, किस प्रकार से हम ये नाप सकते हैं कि इतना ही मोटाई का है तो इसका लगभग इतना कुछ जो दाम है वो मिल सकता है, इस तरह का कोई थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: एग्रोफोरेस्ट्री में एक्चुअली जो जो भी प्रजातियां लगाते हैं हम
1: जी
0: एग्रोफोरेस्ट्री में बाकायदा एक तो सरकार का नोटिफिकेशन है कि
1: जी
0: किसान जो एग्रोफोरेस्ट्री में क्रॉप लगा रहा है उसमें कुछ जो प्रजातियां हरियाणा में जैसे लग रही हैं जैसे मैं सफ़ेदा या अपना पॉपुलर
1: पॉपुलर
0: की बात कर रहे
1: जी
0: थे
1: जी
0: तो एक तो सरकार ने इनको फेलिंग परमिशन वाला जो एक परमिट्स होते हैं
1: जी
0: उससे फ्री किया हुआ है कि उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होती
1: काटने
0: वो
1: की
0: एक
1: जो
0: हाँ
1: जी
0: काटने काटते समय
1: जी
0: क्योंकि वो अगर एग्रोफोरेस्ट्री का पेड़ है तो किसान ने लगाया ही इस पर्पज़ से कि उसकी
1: उसको
0: इनकम कुछ बढ़े।
1: जी
0: सरकार को ये फ़ायदा होता है कि किसान को तो एक इनकम मिलती है
1: जी
0: लेकिन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था उसमें से पेड़ बनने में कार्बन यूज हो गया
1: जी
0: तो इसको हम जैसे एक साधारण साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं तो एक तरह से कार्बन है वो लक्कड़ के रूप में हमने लोक कर दिया
1: जी
0: कार्बन लोकिंग होगी।
1: जी
0: तो एक बहुत बड़ा फायदा है ह्यूमनिटी के लिए
1: जी
0: कि कार्बन जो एटमॉस्फेयर में था जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को मतलब
1: प्रभावित करता है।
0: बढ़ावा या प्रभावित कर रहा था
1: जी
0: उसको हमने कार्बन लोकिंग में
1: तब्दील कर
0: कन्वर्ट
1: दिया।
0: कर दिया।
1: जी
0: तो किसान का तो इनकम बढ़ गई
1: जी
0: और एक साथ साथ ये फायदा हो गया क्योंकि जो कार्बन लोकिंग लकड़ी की होती है तो
1: जी
0: किसान जब पेड़ को बेचता भी है तो जो पेड़ मार्केट में जाके चाहे वो प्लाई बोर्ड बन रहा है या लाइट फर्नीचर में यूज हो रहा है
1: जी
0: तो वो कार्बन एक तरह से लो की है
1: जी
0: जब तक कि वापस एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा
1: नहीं मिल
0: या
1: जाएगा।
0: तो वो जलेगा नहीं या वो गलेगा नहीं
1: जी
0: तब तक वो कार्बन लो पड़ा रहेगा। तो
1: जी
0: एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये
1: जी
0: हम सब के लिए। तो एक इनकम भी जनरेट हुआ
1: जी
0: और एक कार्बन लोकिंग भी हो गया।
2: तो भैया आपने सुनी बातचीत, और भाई देखो कृषि वानिकी है उस नाम अपनाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर साहब ने इसके फायदे बताए हैं। बाकी ये है कि भाई जो जड़ती भी हो उसके कृषि वानिकी हम अपनावें, इसके लिए भाई बहुत सारे फायदे भी मर्द हो रहे हैं। जो अनुदान है वो भी हमने मिला है, पेड़ पौधे हैं वो भी हमने मिला है, और जो एक प्रशिक्षण है वो भी हमने मिला है। तो भी इसके साथ कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त, और ई बाइसलिंग कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और ग्रामीण संसार कार्यक्रम भाई आज भाई सोमवार है, और चौपाल लाइव कार्यक्रम में भैया का भाई स्वागत है। भैया ने फ़ोन नंबर्स पता है 255-446, 255-447, 255-448, और रोहतक का जो एसटीडी कोड है भाई वो 0-12-62। तो भाई अपना पूरे सप्ताह का जो कार्यक्रम सुने हैं भैया ने, किसे लागे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सके हैं, स्वागत है सब बहन भैया का। तो देखते हैं अभी पहला फ़ोन। हेलो हेलो हेलो
3: हेलो
2: जी
3: सुरेंद्र जी बोल रहे हो।
2: जी अनिल बोल रहे हो, अनिल भाई,
3: अच्छा अनिल जी राम राम।
2: राम राम जी, नाम बताओ जी
3: हाँ
2: अपना।
3: क्या होता है कि आवाज़ एक सी हो जाती है ना कई बार सुरेंद्र
2: कोई
3: जी की भी ऐसी
2: बात
3: रहती है
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल
3: आपकी।
2: बिल्कुल, और बताइए।
3: मैं कृष्ण यादव बोल रहा हूँ भिवानी शहर रामगंज मोहल्ला श्रीमती देवी आई आश्रम से।
2: जी, स्वागत है जी आपका बहुत बहुत कार्यक्रम
3: और
2: में।
3: कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। ठीक ठीक
3: उम्मीद करता हूँ कि आकाशवाणी स्टूडियो के सब अच्छे होंगे।
2: हाँ जी बिल्कुल, आकाशवाणी परिवार सारा बिल्कुल ठीक
3: हाँ
2: ठाक है।
3: तो बहुत दिनों के बाद बात हुई है आपसे क्योंकि रेडियो
2: अच्छा
3: खराब था
2: अच्छा
3: और उसे ठीक करवा के लाया हूँ और मेरी जो है स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था अभी भी थोड़ा काम चला उसका ही है।
2: चलो ध्यान रखो स्वास्थ्य का, बदलता मौसम है, कदे तो गर्मी तेज हो जाए, कदे भाई बारिश सी का और इस तरह का कुछ
3: हाँ
2: ठंडा
3: आज बारिश
2: जुकाम।
3: हुई है
2: अच्छा भिवानी में बारिश है,
3: भिवानी में हुई है।
2: चलो ये और भैया ने पता लग गया, बाकी
3: हाँ जी
2: चौपाल से बाहर मौसम ठीक ठाक।

0: है, और कार्यक्रम के
1: जी
0: बारे में बताओ जी, किसे लगा
1: बस
0: आपको?
1: कार्यक्रम आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन वो रोता कई बार गड़बड़ा जाता है।
0: गड़बड़ा तो जी कुछ टावर के बाद में समस्या आ रही है, और देखो खूब अधिकारियां तो बता भी रखे इस बारे में, और आगे उनने
1: हाँ
0: भी बताओ में भेज रखी है, तो धीरे धीरे
1: हाँ
0: करके उसके भी सुधार में आ जाए।
1: तो ये जो पनगढ़ कार्यक्रम है उसको दोबारा शुरू करवा रहे हो क्या?
0: पनगढ़ का तो जी देखो पहले भी एक बार फोन आया था, बाकी वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये बात है प्रोसेस में है, बता
1: चलो फिर
0: जी।
1: कभी भी आपको टाइम लगे ना, एक बार वो गीत जरूर सुनवाना,
0: जी
1: के बेरा था जिंदगी मने इसे मोड़ पर पट्टे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: सुनवा दें, के बेरा था जिंदगी, हरियाणा फिल्म से गीत है
1: जी,
0: जी। धन्यवाद जी,
1: और बस जी, और तो बाकी सब ठीक ठाक है, चलो
0: चलिए
1: ठीक है,
0: बहुत बहुत
1: और भी
0: धन्यवाद
1: चौथा
0: जी,
1: लाइन पे है। हाँ
0: धन्यवाद जी।
1: जी
0: अगला फोन देखते हैं जी। हेलो, अगला फोन
1: हेलो,
0: जी। नमस्कार जी,
1: ओ निधवाई नमस्ते जी।
0: जी नमस्कार जी, ठीक ठाक हैं आप? नाम बताइए जी
1: हाँ
0: अपना।
1: ठीक है ठीक, आपकी बात सुन को ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ और देखो आपके जितने भी अपने श्रोता बंधु हैं और उनके जो एक दुआएं हैं, उनका एक प्यार है, उसका सहारा है जो अपना आकाशवाणी है डट रहा है जी। और बताइए कार्यक्रम किसे लागे जी आपने?
1: गांव नाम तो कोई पूछा जी आपने?
0: हाँ बिल्कुल बताओ,
1: ये गांव बताना नहीं चला जी, मैं जिन्हें बुला रहा है,
0: अच्छा नुकरे के दौर है। नाम?
1: नाम महिपाल जी। हाँ
0: महिपाल जी, बिल्कुल महिपाल जी का स्वागत है, कार्यक्रम बताओ जी किसे लागे?
1: कार्यक्रम तो ठीक है जी, गाड़ी पे गड़बड़ा जी, तो शनिवार में जी बाढ़ में वो राग मियाणी जी खत्म गई, सारे स्टेशन खराब था,
0: अच्छा, टावर के आम
1: वो तो
0: तकनीकी,
1: समय को नियाज सारा गया, पसंद अपने अपने जी,
0: अच्छा, वो नहीं सुन पाए आप, पसंद अपनी अपनी।
1: उसका जी कराओ कि मैं सावधान है।
0: देखो जी ये तो एक तकनीकी जो सौदा तामा जामा है, एक टावर के बाद में जो पहले जो इतनी तकनीकी थी, जो एक शुरुआत में जब उद्घाटन हुआ जो सारी चीज़ स्थापित हुई ना, लेकिन वो
1: हाँ
0: चीज़ धीरे धीरे घटती का पैरा है, वो चीज़ वो उपकरण वो सारा सिस्टम वो स्टाफ सारा देख रेख वो नहीं रही, बाकी कोशिश यह रहे कि बिजड़ती भी हो सके अपना आकाशवाणी हमेशा जिंदा रहे और जो आवाज़ है आप तक पहुँची जा और कार्यक्रम अच्छे प्रस्तुत हो जा। बाकी इस बार में पहले भी फ़ोन आए थे और आज आपने बताया है, अधिकारियाँ तो बता रखा है, जल्दी कोशिश ये होगी कि भाई कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे।
1: पहले मारे गांव की कहानी आ गई, बंद हो रही है एक बार यार की जमा बंद कर दी, सुनाओ ने भाई जी।
0: अच्छा
1: हाँ ये तो जमा छोड़ने की बात थी, वो पसंद पूर्ण भाई करा उसके का सुना
0: हाँ
1: करता,
0: बिल्कुल, मेरे गांव की कहानी कार्यक्रम आया करता, फिलहाल तो जी वो
1: एक
0: बंद
1: बंद
0: है।
1: हो रही है की ये बाहरी यार की है। हाँ
0: हाँ बहुत सारे गाँव माँ की थी उसने, घने गाँव माँ की थी।
1: हाँ
0: चलो जो है पुरानी आपकी गाँव की रिकॉर्डेड है वो कदन कदे जरूर लगावाएंगे जी।
1: अरे गाना ही फरमाइश चलेंगे भाई,
0: जी बताओ,
1: ये गोरी मारा गांव की निर्वण चली है
0: गोरी मारे गांव की जब
1: जगह।
0: निर्वण चाली,
1: हाँ
0: बिजली सी चमकी, धरती धलक धलक आली,
1: हाँ
0: जरूर
1: सुनाइए
0: सुनवाओगे जी। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: जी,
1: धन्यवाद जी सुना के।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अगला फोन देखते हैं जी। हेलो, हेलो
1: हेलो अनिल भाई जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार जी, नाम बताओ जी
1: मैं
0: अपना।
1: राहुल चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल।
0: जी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और बताइए ठीक ठाक हैं आप?
1: हाँ जी सब ठीक है जी, आकाशवाणी प्यार परिवार का प्यार साथ हमारे,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: और 20-25 दिन पहले सुबह 8:30 वाले लोक संगीत में बैरे तबील सुनी थी, शायद चंपाल कलाकार थे, बड़ी
0: अच्छा,
1: अच्छी लगी थी, और आस्था वर्मा जी है इनके आवाज़ में भी है जी बैरे
0: हाँ
1: तबील।
0: बिल्कुल है, बैरे तबील एक अपना गुलाब सिंह खांडवाल जी की भी है, एक उम्मीद सिंह टिटोलिया की भी है, ये अपना बहुत पुराना राग है, अपनी हरियाणवी संस्कृति की
1: एक
0: एक झलक
1: अच्छे
0: है।
1: और एक सांग की कमी बड़ी महसूस हो रही थी
0: सांग
1: चंपाल
0: की जी,
1: जी की।
0: सांग की तो जी देखो अग्रवाल साहब, जब कार्यक्रम प्रभावित हो जाए ना किसी दूसरे कार्यक्रम से, हाँ
1: बिल्कुल सर जी, कभी कभी
0: तो
1: ऐसा
0: थोड़ी सी रोल माज जाए, बाकी तो नू कोने भी सांग भाई प्रसारित करना बंद कर
1: एक
0: दिया।
1: पागल लौटके जी रागनी है जी, रह रहे चूर नशे में मर्द बने
0: मर्द
1: जी,
0: बने
1: ऐसा
0: फिर
1: आप
0: भाई सुनी हुई है, बाकी देखांगे
1: जरूर
0: अग्रवाल
1: सुनिए
0: साहब अगर मिल
1: जी।
0: गई तो
1: ठीक है जी,
0: जी। धन्यवाद जी, अगला फोन। हेलो
1: हेलो सर नमस्ते जी,
0: जी, नमस्कार जी, नाम बताओ जी अपना।
1: मैं ईश्वर सिंह, गांव सिंहवाड़ा जिला हिसार
0: जी ईश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी
1: जी।
0: आपका।
1: मैं जी अपने दो रागनी बताई थी आपको पहले, एक डेढ़
0: हाँ
1: महीने पहले, एक रागनी तो थी माँ मैं जांगा फौज में,
0: अच्छा
1: ये पहले अपने रेडियो पर आया करती, अब नहीं आती।
0: बिल्कुल आया करते जी।

0: और बहुत देखो बहुत सारी सी इस वर्जी रागनी थी, सजना मजांगी मेले में, है
1: सजना
0: ना,
1: मजाएंगे
0: कुएं
1: मेरे
0: पर
1: में।
0: लुगाइयां दो रकाम के फकीर का, बहुत सारी
1: हाँ
0: सी रागनी थी। हमने भी बचपन में भी सिले का बहुत रेडियो सुना है खेतों में क्या, लेकिन क्या है कि जो पुरानी मशीन थी और जो पुरानी सीडी थी ना घूमने वाली, पहले की अब बात
1: हाँ
0: करा, वो उनमें
1: लेकिन एक
0: सीमित
1: बात
0: होकर
1: बताऊं
0: रह
1: क्या
0: गई।
1: आपने, एक एक बताऊं आपने, जो
0: हाँ जी,
1: ये सजना मजाएंगे मेले में है, ये अपनी YouTube पर ये रागनी आ रही है।
0: अच्छा,
1: अच्छा, रेडियम सुनने की मजे कुछ अलग है, जो सीधी सी बात है, इसको सुने
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल जी, तो आप सही
1: है।
0: कहो कि देखो उसका एक अपना ही मजा है।
1: एक
0: और
1: जी है, श्री गंगा जी के प्यार में, सरस्वती कंठार में, जमुना गगर धार में, मारा बसा देश हरियाणा से,
0: बिल्कुल ये भी
1: ये
0: था
1: रागनी भी बंद हो रही आनी।
0: बंद, ये जी ये कारण है ईश्वर जी, एक के जो पुरानी सीडी थी ना वो मशीन तो रही कौन है।
1: तो जी लिया दोबारा टोटा के नहीं, एक
0: देखो जी
1: बताया
0: वो तो
1: जी, ये
0: जमाना
1: रागनी
0: जा
1: भी ले
0: लिया
1: सुनने की है,
0: ये
1: रागनी भी ले
0: वफा
1: आया करती है सुनने की
0: ना,
1: है।
0: बिल्कुल देखो अपनी संस्कृति के प्रहरी हैं और अपनी पुरानी चीजें हैं नहीं, देखो कलंडरा में कुछ रह गई सी नहीं, आप पुरानी बात करा फड़सी वाले जो अपने सोते थे तो ताड़ तार, ये है ना बहुत अच्छी चीजें हैं, आज भी मन करे वो चीज
1: बढ़िया
0: देखा।
1: रागनी आ करती जी
0: बाकी
1: है।
0: देखो जो अपनी नई कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी ना तो उनमें ये चीज शामिल करी जाएंगी कि भाई इस तरह के जो आपने बताई फरमाइश पूरी करी जाए।
1: अच्छा, दो कलाकार अपनी और आया करते जी, उनकी रागनी बड़ी अच्छी आया करती।
0: जी
1: एक तो धर्म सिंह जुलाने का है, उसकी रागनी आया करती, गर्मराड जगाओं वाली वीर नहीं हो अच्छी।
0: बिल्कुल,
1: और
0: देखो
1: एक आया करती रामनिवास की, बैठ जा कुटी माड़े मैल नहीं से, तो
0: दास सी करें दिवसी टेल नहीं है।
1: जी ये रागनी दोबारा ले आऊं इनको।
0: देखो ये तो ईसा ईश्वर जी के नई जो कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी ना, देखो कुछ जो हमारे कलाकार हैं बुजुर्ग हो लिए, कुछ भाई अपना भगवान ने प्यारे भी हो लिए, रामफल शर्मा थे जी थे अपना, उनकी अब
1: हाँ
0: भी
1: जी,
0: हैं मार अनपढ़ का जमाना बापू पाछा जालिया जो हैं वो तो अपना प्रसारित करा। हाँ लेकिन जो जाली देखो जी उसमें तो ईश्वर जी समस्या है थोड़ी, बाकी
1: कोशिश तो करी सको जी, आप कर तो
0: कोशिश तो
1: सारे
0: जी
1: कर
0: नई
1: सकते हैं।
0: रिकॉर्डिंग्स जब होंगी ना तो उनमें शामिल कराएंगे जरूर भी।
1: अब मैं, आपने बताई है ये रागनी, आपने YouTube पर दो रागनी मिल सके हैं,
0: देखो जी वो
1: एक
0: एक
1: तो
0: यूट्यूब का एक अपना साधन है,
1: हाँ
0: आकाशवाणी के अंदर जो नीत है और आकाशवाणी की संपत्ति है वो ही अपना ब्रॉडकास्ट के लायक है, बाकी तो देखो अपना यूट्यूब पर आपने बताया ना बहुत सारी चीज़ें हैं
1: हाँ जी, तो
0: जी ईश्वर जी।
1: जी वो रागनी सुनने जी तो कराई
0: चलो
1: हुए
0: ठीक करे तो जी, कदे न कदे कह तो आपने मुँह बैठ के आप गाय के सुनावांगे
1: ठीक
0: अरनाथ भाई की जेवे करांगे जुगाड़ इसका भी कुछ
1: है सर,
0: जी।
1: फिर जी
0: धन्यवाद
1: कोशिश
0: जी, अगला फोन जी,
1: तो करो जी आप,
0: बिल्कुल जी कोशिश पक्की जी
1: ठीक है जी।
0: जी धन्यवाद जी ईश्वर जी, अगला फोन भाई इंतजार में होंगे। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: नमस्कार जी,
0: जी नमस्कार जी, नाम बताओ जी।
1: सुरेंद्र सांगवान जी, गांव बिरोली जिला जींद जी,
0: जी सांगवान साहब ठीक ठाक हो?
1: बिल्कुल बढ़िया जी, गर्मी थोड़ी ज्यादा जी।
0: गर्मी तो आज एक भाई का फोन आया था भिवानी से, बोला भी हड़की फुड़की के में चादर बेसी मार गया है, बाकी है मौसम की सूचना है कि जल्दी जो बारिश है एक दो दिन में थोड़ी बहुत आओगी जी।
1: कार्यक्रम सारे बढ़िया लग रहे, एक रेडिया को नहीं जी पकड़ रहे, 5-7 दिन तो बांध दिया जी।
0: हाँ दिया उसके बाद में, हाँ
1: हाँ
0: और भी भैया की शिकायत थी कि भी शनिवार ने पसंद अपनी अपनी कार्यक्रम नहीं सुन पाए को तकनीकी खराबी के चलते टावर से संबंधित, बाकी कई बार ये भी लाइट की भी थोड़ी सी समस्या है उस साइड, क्यों पहले वाला ये वाला थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हैं,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: हाँ जी तो
1: कार्यक्रम सारे
0: बाकी तो
1: बढ़िया लग रहे
0: देखो
1: हैं,
0: बड़े बड़े जनरेटर हैं सारा काम चल रहा है, कई बार ऐसा सूत बैठ जाए
1: ये मेरा जी का जी वो है रेडियम
0: हो
1: की
0: जाए
1: दिक्कत
0: जी।
1: पाते थे यार,
0: चलो जी
1: थोड़ा
0: कोई
1: करवा दें जिन में, थोड़ा जब से एक बार तो सही आवाज आने लगी थी साहब
0: चलो
1: की।
0: बिल्कुल जी कराएंगे बात अधिकारियों इस बारे में, देखो हमने भी मज़ा जब भी आओगा जब प्रसारण अच्छे जाएंगे और
1: सही
0: अपना अच्छे लगेंगे, है ना
1: है जी, यार बात तो आपकी
0: जी।
1: सही है, ठीक
0: जी धन्यवाद जी, अगला
1: है
0: फोन,
1: ठीक है, धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद जी, अगला फोन। हेलो
1: नमस्कार,
0: हेलो
1: नमस्कार जी,
0: जी, नमस्कार जी,
1: सतीश बोल रहा था सर,
0: सतीश भाई राम राम, कैसे हो आप?
1: राम राम जी,
0: आज तो के बन्नू को बैड़ी बूंदा बांदी सी आई के अपने बाप पोड़ा में भी
1: मामूली सी थी जी।
0: मामूली सी थी। चलो
1: हाँ
0: कोई
1: जी,
0: ना
1: कल
0: शुरुआत होगी और भी हो जाएगी, और बताओ ठीक ठाक है स्वास्थ्य आपका?
1: रागनी सुनी जी, बहुत बढ़िया लगी तो फिर को।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया, आज वाली नहीं सुनी?
1: आज वाली भी सुनी है जी, लेकिन कल वाली में दम ज्यादा था।
0: हाँ, कल वाली में पड़ो ज्यादा था।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
1: हाँ जी,
0: कोई?
1: उसमें वैसे तो बर्द वाली थी जी।
0: हाँ बिल्कुल बर्द वाली थी, बड़ी मार्मिक कथा है अपने, देखो भाई ये
1: हाँ
0: इन्हें का सार ओढ़ जोड़ो यहाँ पा भी।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ਅੱਛਾ ਬੂੰ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾ ਸੂਤ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੰਗਲ ਦੋ ਚਾਰ ਅੰਗਲ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਰਸਰ ਰਾਮ ਸਾਡ ਸਾਹਮਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਬਰੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਾ ਬਾਈ ਸੂਰਾ ਮਰਜਾ ਰਣ ਮਿੰਨ ਤੇਗਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾ ਜਰੀ ਜਰੀ ਔਰ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਊ ਤੂੰ ਹੰਡ ਲੈ ਡਰੀ ਡਰੀ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡ ਸਾਹਮਣ ਕਾ ਬਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਪਨਾ ਆਊਗੀ ਰੱਸੇ ਸੰਮਤ ਵੀ ਹੋਗੇ ਔਰ ਬਤਾਓ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਿਆ ਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਅਮੂਲ ਆਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੋਂਦਾ ਕਹਿ ਲਿਓ ਔਰ ਸਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਗਰ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਸੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਬਾਈ है ना सारा उनको बता दिया जब भी बोल दिया था जब भी वो आओगे ना जी तो जरूर हम भी बहुत खुश होंगे जी अपने बहुत अच्छे प्रस्तुत करता रहे सब याद करें हैं मिलनसार रहे है ना जी
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है जी आज भगवान की दया
0: से चलो जी बहुत बहुत
1: धन्यवाद जी
0: धन्यवाद जी अगला फोन हेलो हेलो हेलो
2: राम साहब
0: जी राम राम जी
2: मैं गांव किलोई का रमेश बोल रहा
0: हूँ जी रमेश किलोई गांव से बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी का और बताओ रमेश जी ठीक ठाक हैं आप
2: हाँ बिल्कुल सही हाँ जी और अपना आकाशवाणी परिवार
0: बिल्कुल जी आकाशवाणी परिवार प्रभु कृपा से आप भाइयों की दुआओं से बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं और मौसम ठीक ठाक किलोई तो अपना रोहतक आस पास का एरिया हो गया हाँ बस नूए हो रहा है कितने दोपहर आई कितने शाम ना आई हाँ लेकिन जो पहले वाला सौदा था ना सारा कट्ठा बरसा करता कितने छेर नहीं रहा कर दी रात ने अपना जो बिदा कार उनका टरुआ कुड़का होया करता ध्यान होगा आपके पुराना
2: पूरा है, जी,
0: है ना बिल्कुल हाँ जो बुलबुले वाले मीर भाई कितने छेर नहीं रहा कर दी थोड़ा सा प्राकृतिक हिस्सा हो गया तसली कोने भाई को तूफानी बारिश आ जाए इन दिनों मोड़े भी आ जाए हाँ बिल्कुल जो पता से पड़ा करते ना तो चलो प्रभु करा कृपा ठीक ठाक बरसेगा हाँ अपने जितने भी जींस लिसोड़े और अपने टेंट टांड पिंजू सब मतलब सारी चीज चाख रखी से और बता मैं के खा लियो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो और बताओ अपने कार्यक्रम आपने किसे
2: प्रोग्राम कार्यक्रम दा जी सारे बढ़िया लग गए हैं
0: चलो जी बहुत बढ़िया है तो
2: थोड़ा हर दिक्कत सिस्टम आ जाए
0: देखो जी या तो रोल है दिक्कत है अधिकारी गणा ने पता भी है बता भी रखा और भी सूचना देंगे और हमने भी मजा मतलब भी हां जी हां जी चलो हाँ ये बिल्कुल रागनी है अपने पास
2: हाँ एक बात जी कह दूंगा समझ मन जानती बताऊं जी
0: हाँ
2: तो राजकृष्ण की हम सोचते आ रहा राजकृष्ण है ओ राम राम कुमार खुंडा
0: हाँ जी
2: कई ऐसे पुराने कलाकार हैं जैसिंग जूसिंग ये जो मतलब तराशी पचासी के सुनते आ रहा हूँ नरवाई रागनी
0: देखो जी
2: का
0: देखो जी ये बात सच्चाई है देखो जो अपने कलाकार थे ने पीछे भाई का जिक्र चल रहा था भाई ये रागनी थी अनपढ़ का जमाना बापू पाद से चालिया है रागनी लेकिन जो कलाकार है ना जो अपने मास्टर जी थे दौरन वाले वो भी भगवान ने प्यारे हो लिए बलबीर शास्त्री जी का पता लग गया खेड़ी चोपटा वाले उमेद सिंह टिटोलिया जी अपने बहुत अच्छे कलाकार रहे वो भी भगवान ने प्यारे हो लिए हाँ बिल्कुल देखो ये जितने भी कलाकार नए कलाकार के जो आकाशवाणी में आओगे कुछ ऑडिशन होंगे तो उन आगे भाई अरदास कराएंगे भाई ये जो इस तरह की रागनी है पुरानी वो गाई जा
2: जाए सात के भी साधु सदो हजार सात के और ग्यारह के बीच में जो कलाकार रागनी गा रखी है ना जी वो बहुत बढ़िया गा रखी है
0: हाँ बिल्कुल और देखो पहले के ये जो भी जो अपने कलाकार हैं बुजुर्ग हो गए थोड़े से बुजुर्ग थोड़े से वो दम नहीं रहा मेरे रणबीर सिंह बड़वासनिया जी हैं है ना और
2: कई गायकार बढ़िया गा रखी है जैसे रामपुर कोकर कंसलिया है
0: जी जी चलो बिल्कुल आप कई सुझाव
2: जी रमेश कुमार सैनी वो साथी है एक मन फूल है कई ने मतलब बहुत बढ़िया गा रखी है 2007 13 के बीच में बढ़िया रागनी गा रखी पड़ दिया की

0: मारते पोचे हैं तो जरूर भी
1: नहीं, वो ऐसा है जैसे एक दिन तो जैसे एक संडे को रागनी चलाइए हैं, तो एक संडे को सजीव फोन प्रोग्राम चलाइए तो अच्छा लगेगा। और जो संडे आता है 10 बजे तो उसमें रागनी चलाते हैं। पहले भी एक संडे को रागनी चलती थी, एक संडे को फोन प्रोग्राम चलता था, वो बस फोन प्रोग्राम बंद कर दिया अब तो रागनी चलती है।
0: बस वो ये हो जाए कि दोनों तरफ जो अपने हरियाणवी कल्चर के जो ज्यादा वो है दीवाने, वो तो ये कहते हैं जो और भी
1: लेकिन
0: प्रोग्राम
1: है
0: ना।
1: तो न्यू यूनियन एप्लीकेशन पे तो ऑल इंडिया बड़ सुन रहा है, तो किसी को सॉन्ग बारी पसंद आएंगे, कोई
0: हरियाणवी
1: पसंद है, तो कछु हमें कहना रे एक एक हफ्ते रागनी चलाना चाहिए, एक संडे को, एक संडे को
0: चलो
1: सजीव फोन प्रोग्राम।
0: आपका जो सुझाव है अधिकारी तक पहुंचाएंगे जरूर भी। धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद।
0: अगला फोन। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी, हेलो जी,
2: अनिल भाई राम राम
0: जी, राम राम जी, नाम बताओ जी अपना।
2: मैं धर्मवीर प्रजापत बोल रहा हूँ जी, गांव बड़ौदा जिला जींद से।
0: बिल्कुल धर्मवीर प्रजापत जी, गांव बड़ौदा जिला जींद से, और बताइए।
2: हाँ
0: ठीक ठाक हैं आप?
2: हाँ ठीक ठाक। हाँ भाई साहब आप ही सुनाओ जी, कैसे हो?
0: क्यों ढीला बोलिया? गर्मी तो जी देखो, बस पहले जो पाए के बुगड़े बूंदा कर दे है ना। हाँ वो तो ध्यान होगा आपके, और ये तो बहुत सारी सुविधा हो रही है। बाकी हाँ देखो, बच के रहना चाहिए मौसम से, नींबू पानी पीते रहवा, खेत क्यार के काम है वो थोड़ा सा बारी सवेरी अपना करते रहे, और ध्यान रखो अपना और बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ अपने कार्यक्रम के बारे में जी।
2: कार्यक्रम तो जी बहुत है, बढ़िया है, ठीक है, पसंद आवा जी कार्यक्रम। फिर मेरी एक फरमाइश पूरी नहीं करी जी आपने, मैंने दो बार कह ली पहले।
0: क्या?
2: वो राम कुमार शर्मा की रागनी सुनवा दो जी एक दिन लोक संगीत में सुबह।
0: राम कुमार शर्मा की पीछे आपने कब सुनी थी?
2: काम का कलाकार है जी, इसकी बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत दिन पहले सुनी थी, एक बार सुनी थी बस।
0: चलो ये तो आपका हाँ जी सुझाव नोट कर लिया, बाकी फिलहाल तो जी अपना घड़ी का नहीं देख लिया। धन्यवाद जितने भी भाई अपने बाण भाई फोन आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इससे के साथ भी आज का ग्रामीण संसार कार्यक्रम समाप्त करने की अनिल भाई इंदु इजाजत, सारे बाण भाइया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला गीत, विशाल ददलानी और शिल्पा राव की आवाज़ में, फिल्म अनजाना अनजानी से। इस गीत को लिखा है विशाल ददलानी ने और संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

फिल्म अनजाना अनजानी से सुना अभी आपने ये गीत, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म चल मेरे भाई से। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवाएंगे फिल्म हमेशा से। इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अन्नू मलिक ने।

वेलकम फिल्म से सुनवाते हैं आपको अगला गीत आनंद राज आनंद की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद राज आनंद ने और संगीत भी दिया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत। ये है मुंबई मेरी जान फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार शानू ने, लिखा है आनंद मिलन ने और संगीत दिया है, माफ़ कीजिएगा, लिखा है इंडीवर।

कार्यक्रम फिल्म संगीत को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी सूचना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप अभ्यर्थियों से दूरदर्शन व आकाशवाणी चंडीगढ़ तथा आकाशवाणी रोहतक हिसार कुरुक्षेत्र के लिए आवेदक पत्र किए जाते हैं। डिग्री एवं डिप्लोमा के छात्र कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए पात्र होंगे। स्टाइपेंड भत्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुरूप दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30/6/2026 6:30 बजे तक। विशेष जानकारी के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी चंडीगढ़ के उप महानिर्देशक के निजी सचिव के कार्यालय दिवस के इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 01722687989। आकाशवाणी चंडीगढ़ के लिए निर्देशक के निजी सचिव के इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 01722601845। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर रहेगा 01744220561। आकाशवाणी रोहतक के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 01262230229। आकाशवाणी हिसार के लिए नंबर रहेगा 01662254275। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम से। इस गीत को गाया है हिमेश रेशमिया ने, लिखा है समीर ने और संगीत भी दिया है हिमेश रेशमिया ने।

सनम तेरी कसम फिल्म से सुना भी आपने ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाएंगे सुल्ताना नूरून और ज्योति की आवाज़ में फिल्म हाईवे से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

फिल्म साजन चले ससुराल से सुना भी आपने ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनेंगे लकी अली की आवाज़ में, कहो ना प्यार है फिल्म से। इस गीत को लिखा है विजय अकेला ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में पहली गजल आपको सुनवाएंगे कृष्ण अरोरा की आवाज़ में।

0: इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत को यहीं समेटते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपये

0: गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम

0: दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच

कार्यक्रम एक फिल्म से में अगला गीत सुनवाते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म आदि पुरुष से। इस गीत को लिखा है मनोज मुश्तिहार ने और संगीत दिया है अजय अतुल ने।

अगला गीत सुनेंगे अजय गोगाबले की आवाज़ में, फिल्म आदि पुरुष से। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अजय अतुल ने।

कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत, विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो, जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत

0: की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है, यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धन राशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है,
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी

0: तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहाँ तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ है।
1: जी, हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम रहती है। ये एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध

0: इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए, या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे, और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम। मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह से?
0: जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि MSMEs जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफ़ी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है, तो मैं यहाँ

0: बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता
1: है। और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेज
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड हैं आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया, और उसके बाद काफ़ी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल

0: डिमेंट प्राइसेस जो है वो काफ़ी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं। और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट हैं। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम हैं वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
1: जी
0: अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा
1: जी
0: हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज़ है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो।
1: जी हाँ, अपना सवाल
2: हाँ
1: पूछें
2: हाँ नमस्ते मैडम।
1: जी।
2: हेलो।
1: जी हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
0: बिल्कुल, आपको लोन मिल सकता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है,
1: जी
0: इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं। तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर
1: जी
0: सकें, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं? रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलेंट्री है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं
1: जी
0: और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहाँ पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना
0: जी
1: शुरू की

0: खेती, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके
0: जी
1: हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपये का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको
0: जी जी
1: जानकारी।
0: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, राग यमन, गायक हनीफ अहमद खान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए सबसे पहले अपना पता बता देते हैं। मन चाहे गीत द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड रहेगा 124001। आप इस पते पर पत्र लिखकर हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देर ना करते हुए देखते हैं पहला खत हमें कहां से मिला है। पहला खत हमें मिला है फतेहाबाद से। भेजने वाले हैं बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भूविक। चरखी दादरी से आप हैं जगनेश सांगवान। करनाल से खत भेजा है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन और प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया कालका, विपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता ने। सच्चा खेड़ा से ये हैं वेद बिहारी, बगावत यूपी से एहसान अली। ये पत्र भेजा है मटोर से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर ने। शालर पहलगाम कश्मीर से ये हैं पीरजादा मेहर, केसर दीन और नजम दीन। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं अशोक श्याम कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति। आइए इन सबकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे सनम से ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला पत्र हमें मिला है, इंदौर एमपी से भेजने वाले हैं वंदना, गणेश, कार्तिक भाऊ मराठा, परी, संजना मराठा, मालती चौधरी और स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण, मेरठ छावनी से दिव्य दर्शन और कविता, हिसार से आप हैं राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली, ये पत्र है पत्रोड़ा अनूपगढ़ से, भेजा है मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील, कापशी अकोला महाराष्ट्र से संतोष राव, ज्योति ताई, पवन कुमार, कैलाश राव, वंदना ताई, धामनी मनोरा वाशिम से, तुलसीराम डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल, ध्रुवगिरी, ज्योति, अनूप, गुलशन डेरे, चंद्रकांत पाटिल, नितिन, आकाश, शेखर, किशन, तेजस और परणिता। आइए सुनते हैं इन सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म नीलकमल का ये गीत। शब्द रचना है साहिल लुधियानवी की और संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में पत्र लिखने के लिए हमारा पता है मन चाहे गीत द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड रहेगा 124001। अगला पत्र भेजने वाले हैं हमें सुंदरपाल कौशिक, केलंगा से। सुंदरपाल कौशिक अभी, निशु, देवू, पीहू और पाखी कौशिक। पुणे से आप हैं पंकज वड़ोत्रे, आर्या, आदि, शैलेश, सोनम धनुषपुरी, बीटे वड़ोदे। पिरता कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल और रमेश वर्मा। गांव बिरौली जींद से आप हैं सुरेंद्र सांगवान, अंकित सांगवान और सचिन सांगवान। योगनगर पंजाब से पत्र भेजने वाले हैं नरेंद्र मेहता, वरेंद्र मेहता, गिरिराज मेहता, हनी मेहता और सिमरत मेहता। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखित परवीन, आरजू, अरमान, आलम और तस्नीम। मलोट पंजाब से आप हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप और रौनकदीप कौर। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत फिल्म खामोशी से। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है राजेश खन्ना ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी सूचना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अभ्यर्थियों से दूरदर्शन व आकाशवाणी चंडीगढ़ तथा आकाशवाणी रोहतक हिसार कुरुक्षेत्र के लिए आवेदक पत्र किए जाते हैं। डिग्री एवं डिप्लोमा के छात्र कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए पात्र होंगे। स्टाइपेंड भत्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुरूप दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 30/6/2026 साय 6 बजे तक। विशेष जानकारी के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी

यानी चंडीगढ़ के उप महानिर्देशक के निजी सचिव के कार्यालय दिवस पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 01722687989। आकाशवाणी चंडीगढ़ के लिए नंबर रहेगा 01722601845। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के लिए ये नंबर रहेगा 01744220561। आकाशवाणी रोहतक के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 01262230229। आकाशवाणी हिसार के लिए नंबर है 01662254275। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म शर्मीली से। इस गीत को लिखा है नीरज ने और संगीत दिया है SD परमन ने, और ये गीत सुनने की फरमाइश भेजी है देवघर झारखंड से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, रोशनी केसरी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। पंखा रोड दिल्ली से पिंटू दीवाना, सतनाम कौर, हनी सिंह और राकेश सेठी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चकला बाजार समाना से ये हैं पुष्पा राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और इनका समस्त परिवार। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में आखिरी पद हम शामिल करने जा रहे हैं। ये आया है डबवाली हरियाणा से, भेजा है जेके बोकलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू बोकलिया ने। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आल्या और अरयान। चनहेटी बरेली से आप हैं विनेश कुमार, रागिनी, श्रीवास्तव और मुस्कान। करनाल से पत्र भेजा है नरेंद्र तनेजा, देव, कोमल और शिवम तनेजा ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले और आरती जोतले। लोहा मंडी गंजुडुडवारा से इकबाल सलमानी, फैजान, मोमिन, रिहान इकबाल, इरम और अफाक सलमानी। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित, सुरभि, अनीता और राजीव ढींगड़ा। गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला राजस्थान से ये हैं राजू टुटेजा, खुश दिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, चीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वड़वाल, शिव सेठी, करणपुरी और स्माइल टुटेजा। आइए इन सब की फरमाइश पर कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं सलमा आगा की आवाज़ में फिल्म निगाह से। हसन कमाल ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है रवि ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को यहीं संपन्न करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है रात्रि के 11:10 और 10 सेकेंड। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर कल प्रातः 5:55 मिनट पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।